नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 20 सेकेंड्स में प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकाल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है मृदा एवं हरी खाद।

0: बाद संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
1: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा परीक्षण एवं हरी खाद की। जी हां किसान भाइयों, रबी फसल की कटाई के बाद किसान खेत खाली होने पर मृदा की जांच जरूर करवाएं। 3 वर्षों में एक बार अपने खेतों की मृदा परीक्षण जरूर करवाएं, ताकि मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज एवं अन्य की मात्रा का पता चल सके और फसलों में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में डालनी है इसका निर्धारण किया जा सके। किसान भाइयों, मृदा जांच से मृदा में खराबी का भी पता चलता है, ताकि उन्हें सुधारा जा सके, जैसे कि क्षारीयता को जिप्सम से, लवणीयता को जल निकास से और अम्लीयता को चूने से सुधारा जा सकता है। मृदा जांच कराते समय प्रयोगशाला के प्रभारी से नमूनों की जांच के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य प्राप्त करें, ताकि आगामी खरीफ की फसल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके। किसान भाइयों, मृदा की सेहत ठीक रखने के लिए देसी गोबर की खाद या कंपोस्ट बहुत लाभदायक है। जी हाँ किसान भाइयों, अप्रैल में गेहूं की कटाई और जून में धान मक्का की बुआई के बीच 50 से 60 दिनों खेत खाली रहते हैं। इस समय कुछ कमजोर खेतों में हरी खाद बनाने के लिए ढेंचा, लोबिया या मूंग लगा दें और जून में धान रोपने से 1-2 दिन पहले या मक्का बोने से 10 से 15 दिन पहले मृदा में जुताई करके मिला दें, जिससे मृदा की जो सेहत है वो सुधर जाए। लगातार बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही है। ऐसे में किसान इस समय हरी खाद का प्रयोग करके न केवल अच्छा उत्पादन पा सकते हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। हरी खाद मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उम्दा और सस्ती जीवांश खाद है। हरी खाद का अर्थ उन

0: यह खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर उसकी भौतिक दशा में सुधार करती है। हरी खाद को अच्छी उत्पादक फसलों की तरह हर प्रकार की भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भूमि की सेहत ठीक बनी रहेगी। किसान भाइयों, हरी खाद बनाने के लिए खेत में खड़े पानी में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ढैंचा का बीज छिटरा दें। जरूरत पड़ने पर 10 से 15 दिनों में ढैंचा फसल की हल्की सिंचाई कर लें। 20 दिन की अवस्था पर 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया को खेत में छिटराने से मॉड्यूल बनने में सहायता मिलती है। 55 से 60 दिन की अवस्था में हल चलाकर हरी खाद को पुनः खेत में मिला देते हैं। इस तरह लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हरी खाद उपलब्ध हो जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी में ढैंचे के पौधों के गलने सड़ने से बैक्टीरिया द्वारा नियत सभी नाइट्रोजन जैविक रूप में लंबे समय के लिए कार्बन के साथ मिट्टी को वापस मिल जाते हैं। हरी खाद से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। हरी खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की भौतिक शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। हरी खाद से मृदा उर्वरता की भरपाई होती है। सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। मिट्टी की संरचना में सुधार होने के कारण फसल की जड़ों का फैलाव अच्छा होता है। हरी खाद के लिए उपयोग किए गए फलीदार पौधे वातावरण में नाइट्रोजन व्यवस्थित करके मॉड्यूल में जमा करते हैं, जिससे भूमि की नाइट्रोजन शक्ति बढ़ती है। हरी खाद के लिए उपयोग किए गए पौधों को जब जमीन में हल चलाकर दबाया जाता है तो उनके गलने सड़ने से मॉड्यूल्स में जमा की गई नाइट्रोजन जैविक रूप में मिट्टी में वापस आकर उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। पौधों के मिट्टी में गलने सड़ने से मिट्टी की नमी को जल धारण की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। हरी खाद के गलने सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि मिट्टी से आवश्यक तत्वों को मुक्त करवाकर मुख्य फसल के पौधों को आसानी से उपलब्ध करवाती है। किसान भाइयों, हरी खाद का व्यवहारिक प्रयोग हम उन क्षेत्रों में कर सकते हैं जहाँ नाइट्रोजन तत्वों की काफी कमी है, जिन क्षेत्रों की मिट्टी में नमी की कमी कम हो। हरी खाद का प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ना करें। इन क्षेत्रों में नमी का संरक्षण मुख्य फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी अवस्था में नमी के संरक्षण के अन्य तरीके अपनाएं। किसान भाइयों, ये हुई बातें मृदा परीक्षण और हरी खाद की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था मृदा एवं हरी खाद संकलन एवं वाचन, प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं श्री राम चरित्र।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निःशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुत हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं, और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है

से कीर्ति, ऐश्वर्य और सदगति की अभिलाषा हो, जो मन वचन कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो, क्या उसका त्याग किया जा सकता है?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है आस्था, संकलन एवं वाचन निर्मला तिवारी का।

0: एक संत वियावान में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वे राह से गुजरने वाले पथिकों की सेवा करते और भूखों को भोजन कराया करते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उस राह से गुजरा। उन्होंने हमेशा की तरह उसे विश्राम करने को स्थान दिया और फिर खाने की थाली उसके आगे रख दी। बूढ़े व्यक्ति ने बिना प्रभु स्मरण किए भोजन प्रारंभ कर दिया। जब संत ने उन्हें याद दिलाया तो वो बोले, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। यह सुनकर संत को क्रोध आ गया और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के सामने से भोजन की थाली खींचकर उसे भूखा ही विदा कर दिया। उस रात उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले, पुत्र, उस वृद्ध व्यक्ति के साथ तुमने जो दुर्व्यवहार किया उससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। संत ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने तो ऐसा इसलिए किया कि उसने आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। भगवान बोले, उसने मुझे नहीं माना तो मैं भी आज तक उसे भूखा नहीं सोने दिया, और तुम उसे एक दिन का भी भोजन न करा सके। यह सुनकर संत की आंखों में अश्रु आ गए। स्वप्न टूटने के साथ उनकी आंखें भी खुल गईं। कहने का अर्थ है कि जब ईश्वर किसी के साथ बिना भेदभाव किए सब कुछ देता है तो फिर हम मानव भेदभाव क्यों करते हैं। ईश्वर की भक्ति अपनी जगह है, लेकिन मानव सेवा अपनी जगह है। जो मानव सेवा करते हैं उन्हें इस बात का कोई भी पश्चाताप नहीं होता है कि ईश्वर को वह व्यक्ति मानता है या नहीं। यह तो उसकी आस्था है, वह माने या ना माने। लेकिन यदि हम किसी के लिए परोपकार कर रहे हैं तो फिर हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है। वह जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, और यही सच्ची सेवा है, मानव धर्म है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यह बात बार बार कही जाती है। हमारे महापुरुषों ने भी हमेशा हमें यही सिखाया है कि मानव धर्म सबसे बड़ी सेवा है। वह जिस रूप में है, जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकार करो, उसकी सेवा करो, किसी तरह का भेदभाव मत करो। जब आप ऐसा करते हैं तभी आप सच्चे सेवक कहलाते हैं, अन्यथा आपके अंदर भी फिर तो कुछ चाहत रह जाती है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए ईश्वर आराधना, आस्था, यह सब आप अपने ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगला कैसा है, वह करता है या नहीं करता है, यह उसकी आस्था है। हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि मानव मानव है और हमें उसे ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी यह नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में। आज का विषय था आस्था, संकलन एवं वाचन निर्मला तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको हरि ओम शरण के गायचंद भक्ति गीत सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना में हरिओम शरण को। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा, संकलन एवं वाचन अनुराधा सिंह का।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं,

0: उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चकियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़। डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां। आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं। सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियां शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गाँव के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों की विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा, संकलन एवं वाचन अनुराधा सिंह का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है बच्चों में निमोनिया। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर नरेश भगत।
2: हमारे आने वाले भारत के भविष्य और इन्हीं छोटे छोटे बच्चों पर भारत की तरक्की निर्भर करती है और यह छोटे बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, खुश रहेंगे तो आगे चलकर भारत की एक अच्छी तस्वीर उकेरेंगे और भारत विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, निरोगी रहें, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा ही बीमारी है जो नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, वो है निमोनिया। निमोनिया क्यों हो जाता है, क्या कारण है और हमारे माता पिता किस प्रकार सजग हो कि जैसे ही मालूम पड़े कि हमारा बच्चा निमोनिया से ग्रसित होने वाला है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उपचार शुरू कर दें और साथ साथ हम सावधानियाँ किस प्रकार रखें। बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर नरेश भगत।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे में ये बीमारी आम तौर पर देखी जाती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो निमोनिया का भी शिकार हो जाता है। तो निमोनिया होने का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है और लक्षण हम किस प्रकार देख कर पहचान पाए?
3: बॉडी को स्टडी के लिए हम लोग डिफरेंट अनेक सिस्टम में बांटे हुए हैं। जैसे ऊपर में जो भेजा है ब्रेन है और इस नर्वस सिस्टम में आता है, उसके बाद नाक से शुरू होता है एक सिस्टम, फेफड़ा में ख़त्म होता है और रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, मुंह से ख़त्म होकर एनस तक जो जाता है वो एक एलिमेंट्री कैनाल है, छाती में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके बाद हड्डी और जो मसल का जो स्टडी करने के लिए जो बांटा गया है सिस्टम वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, क्योंकि ये हमारा सिस्टम एनवायरनमेंट से खुला हुआ रहता है, हवा सांस में हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, तो तो इस तरह से हवा लेते हैं उस क्रम में इन्फेक्शन जाने की संभावना

0: बहुत ज़्यादा रहती है, और ऐसे भी हमारा एटमॉस्फेयर है जो हवा में है उसमें डस्ट है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स है, वो सब इन्फेक्शन का कारण बनता है, सांस में चला जाता है। तो निमोनिया का सबसे बड़ा कारण हम लोग मानते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन इज़ द इन्वेजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर का इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्वेजन होता है वही इन्फेक्शन है। तो निमोनिया भी एक इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रमुख बीमारी है, श्वसन तंत्र का प्रमुख बीमारी है। इस बीमारी में फेफड़ा में सूजन आ जाता है, फेफड़ा लाल हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और जो फेफड़ा का जो मेन अंग जो काम करता है, जहाँ हवा का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, वहाँ पर पस भर जाता है और उसमें पानी भर जाता है, जिसके चलते जो फेफड़ा का जो मेन काम है गैसों का एक्सचेंज करना, उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। बहुत सेवियर होने पर और भी लक्षण हैं, जैसे इसका मेन लक्षण है हमारा खांसी, बुखार, तेज सांस चलना, दम फूलना। अगर मरीज को तेज सांस के साथ में दम भी फूल रहा है या नीला हो जा रहा है ओठ या शरीर, तो इसको तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, और तो मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है बच्चों में। अभी भी हमारे यहाँ जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसमें एक बहुत बड़ा इसका योगदान है।
1: जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत वो निमोनिया से भी ग्रसित हो जाता है, तो इसका उपचार कैसे किया जाता है?
0: निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन सही इलाज से पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जन्म से हम लोग 28 दिन का बच्चे को नियोनेट बोलते हैं, उस समय सांस का रेट होता है 40 से 60 होता है। अगर 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है बच्चा, तो संभावित माना जाए कि बच्चा का चेस्ट में इन्फेक्शन है। इसको हम लोग डेंजर साइन के रूप में रहते हैं, तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और छोटे बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल होता है, जनरली निमोनिया का जो कारण होता है ज़्यादातर वायरल होता है, लेकिन बैक्टीरिया वो अपने आप ठीक होता है, वायरल 2 to 7 days में बॉडी अपने रिस्पॉन्ड करता है और उसको करेक्ट कर लेता है। लेकिन सबसे दिक्कत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होने वाली बीमारी है उसके लिए, छोटे बच्चों में जनरली एच इन्फ्लुएंजा और स्टैफिलोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया का कारण ये है बैक्टीरिया में। और एक साल के बाद जो इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या हम लोग निमोकोकस बोलते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो छोटे बच्चों में जो होता है एच इन्फ्लुएंजा और स्टैफिलोकोकस, उसके लिए हम लोग एम्पिसिलिन साथ में जेंटामाइसिन या क्लोक्सासिलिन के साथ मिला हुआ, मैंने पेनिसिलिन ग्रुप और जेंटामाइसिन के साथ मिला हुआ हम लोग दवा देते हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। सही इलाज सही समय पर होने से निमोनिया पूरी तरह से ठीक होने वाला और पूर्णतः ठीक हो जाता है
1: जी। और एक बार जब निमोनिया बच्चे को ठीक हो जाता है, तो कितना संभावना है कि बार बार उससे हो, और हम इसका देख रेख कैसे करें? बचाव ही कहते हैं सबसे बड़ा उपाय है।
0: हाँ, आपने सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम लोग कहते हैं। तो निमोनिया के बचाव के लिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है न्यूट्रिशन, पोषण भी अच्छी तरह होना चाहिए। पोषण से बॉडी का इम्यूनिटी बना रहता है, खासकर हमारे झारखंड में माल न्यूट्रिशन की ये समस्या है, जिसके चलते बच्चे का शरीर कमज़ोर रहता है और इम्यूनिटी कम रहता है, जिससे ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी घर कर जाता है। प्रिवेंशन के लिए टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। इसका एक टीका आया हुआ है निमोनिया का, जिसको हम लोग निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं, सिनफ्लोरिक्स या प्रिवेनार के नाम से बाजार में उपलब्ध है। यद्यपि ये महंगा है, ये अगर जो लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। हमारे सरकारी सिस्टम में जो अनिवार्य टीके हैं वही उपलब्ध होते हैं, ये ऑप्शनल टीका में आता है, इसलिए उपलब्ध नहीं है। अन्य भी उपायों से हम निमोनिया का बचाव कर सकते हैं, जैसे टीकाकरण के दौरान 9 महीना से 1 साल के बच्चे को हम लोग विटामिन ए का सिरप देते हैं। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। 1 साल में चालू करने के बाद हर 6-6 महीने में बच्चे को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है, जो 5 साल तक पिलाया जाता है, टोटल 9 डोज पिलाया जाता है। विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं, जिससे बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है और बार बार जो निमोनिया डायरिया या इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। इसलिए टीकाकरण में विटामिन ए का सिरप अवश्य पिलाएं, खान पान में भी ऐसी चीज़ों का समावेश करें जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो।
1: खान पान में हम किस तरह के फलों का सेवन करें, और घर में जो अनाज है उसका हम बच्चों को सेवन कराएं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो खाने में बहुत झिकझिक करते हैं।
0: आपने सही कहा, बच्चे आजकल जो फास्ट फूड कल्चर आ गया है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो ये स्वादिष्ट तो है लेकिन न्यूट्रिटिव नहीं रहता है। बच्चों को सीजनल फ्रूट्स दिया जाए, खासकर विटामिन ए की जो मात्रा मिलती है हमारे लाल पीले फलों में मिलती है, जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, इस समय ज़्यादा मिलता है। तो इन फलों का समावेश जरूरी करना है। गाजर का उसको सलाद बना के दिया जा सकता है, हलवा बना के दिया जा सकता है, साथ में हरी हरी सब्जियों का समावेश किया जाए,

0: में विटामिन ए की मात्रा रहती है।
1: और सबसे बड़ी बात कि हमारे माता पिता को सजग होने की आवश्यकता है। बच्चे को यदि हम सही से देख रेख करते हैं, खासकर जो हमारा नवजात शिशु है उसको देख रेख की आवश्यकता है। और जब ऋतु परिवर्तन होता है और खासकर हम ठंड के मौसम की बात करें तो ये बीमारी ज़्यादा बच्चों को अपने गिरफ्त में लेती है।
0: हाँ, सही कहा। बच्चों का शरीर छोटा होता है, गर्मी कम बनता है। तो जैसा मैंने कहा कि 0 से 28 दिन का बच्चा को हम लोग न्यूनेट बोलते हैं, सांस 40 से 60 बार लेता है। ज़्यादा 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चे को ठंडा से बचाने के लिए 3-4 लेयर गर्म कपड़ा पहनाएं, साथ में अगर कोई जगह रहते हैं दिन में तो उसको गोद में रखें, अपना बदन से सटा करें ताकि गर्मी मिले। हम लोग जब कम वजन वाले बच्चे या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उसका हम लोग KMC कराते हैं, कंगारू मदर केयर कराते हैं। उसमें स्किन को स्किन कंटैक्ट करा के बच्चे का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। एक गर्म बच्चे को गर्म रखने का विधि है कंगारू मदर केयर, जिससे बच्चा गर्म रहता है, ठंड नहीं लगता है, जिसके चलते निमोनिया किसी पे बचाव का उपाय बनता है।
1: खान पान के भी ध्यान रखने की आवश्यकता, और खासकर जो बच्चा नवजात है तो माता अपने स्तनपान उसे ज़रूर कराएं। ये बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावार के लिए, और बच्चे को मानसिक रूप से विकास होगा, बच्चा का विकास सही होगा और बच्चा का बढ़ावार सही होगा और वो चपल होगा, चंचल होगा, और यही बच्चे आगे चलकर देश का निर्माण करेंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में बच्चों में निमोनिया, इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर नरेश भगत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडॉलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडॉलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुम्बईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने काङ्ग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल् दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिङ्ग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषणविभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य पञ्चविंशतिः दिनाङ्कात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्रस्रावप्रकरणस्य प्रमुखविकासे लातूरनगरस्य बालरोगचिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषणविभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबादनगरस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एकोननवतिः धावनाङ्कैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनाङ्कानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्यचतुर्दशकन्दुकक्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनाङ्कान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच

0: के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road, Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 till her cremation. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's joint director, East, will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. The young medic was sexually assaulted and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Ministry of Railways has urged passengers to remain alert during travel and immediately

8:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू। खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी की, संयोजन श्री एस के लाल की। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सेहत माला आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 11 बजे होगा कार्यक्रम रंग तरंग, 12 बजे यादों की महफिल।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

2:55 पर होगा प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 4 बजे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर सखी सहेली विविध भारती का कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 5 बजे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर छाया गीत विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में आपको जिरगा भगत और इग्नेश कुमार के गाए चंद लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे थे जिरगा भगत और इग्नेश कुमार की आवाज में चंद लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम स्वर सरिता। आइए सुनते हैं हरी हरण की आवाज में चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन को, कार्यक्रम स्वर सरिता में हरिहरन से चंद गज़लें। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही होगा प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने

0: वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने

25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। सीबीआई

0: स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूरतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मतदाता सत्यापन का रोडमैप पर होगी चर्चा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। सभी एसपी को लंबित मामलों का 60 से 90 दिनों में निष्पादन करने के लिए दिए कड़े निर्देश। राज्य के 10 जिलों के 35 बालू घाटों को मिली पर्यावरण स्वीकृति। बालू की किल्लत होगी दूर, निर्माण कार्यों को मिलेगी गति। रांची में आज से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स महाकुंभ। देश भर के 700 एथलीट लेंगे हिस्सा। कॉमनवेल्थ गेम के लिए होगा भारतीय टीम का चयन। और मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल समेत कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर आज रांची में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची में सुधार और घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल रांची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के पांचों डिवीजनल कमिश्नर मोर्चा संभालेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन और सूची में सुधार के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
1: एसआईआर का प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। इसमें पब्लिक का बहुत महत्वपूर्ण दो डेट का बारे में बताएंगे। वो इन्यूमरेशन देने वाला समय है 30 जून से 29 जुलाई तक है। इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे। उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी।
0: राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीकी आधारित पुलिसिंग को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलों के कप्तानों को नए

आर को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, मतदाता सत्यापन के रोडमैप पर होगी चर्चा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर, सभी एसपी को लंबित मामलों का 60 से 90 दिनों में निष्पादन करने के दिए कड़े निर्देश। राज्य के 10 जिलों के 35 बालू घाटों को मिली पर्यावरण स्वीकृति, बालू की किल्लत होगी दूर, निर्माण कार्यों को मिलेगी गति। रांची में आज से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स महाकुंभ, देश भर के 700 एथलीट लेंगे हिस्सा। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होगी भारतीय टीम का चयन। और मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल समेत कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर किए आपको सुनवाते हैं ये पहला गाना जिसे हमने लिया है, फिल्म है हम साथ साथ हैं, आवाज़ मिलिंद हरिहरन, संतोष और प्रतिमा की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जीवन में सफलता बिना मेहनत और संघर्ष के नहीं मिलती। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वही एक दिन चमकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आपको मौसम का हाल बता दें। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज ह्यूमिडिटी रहेगी 38% तक। आज सूर्यास्त का समय होगा 6:32 पर। कल सूर्योदय का समय होगा 5:08 पर। श्रोताओं, मौसम विभाग की तरफ से आपको बता दें कि आज मौसम बहुत ही गर्म रहने वाला है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि लू अभी अपने प्रचंड पे है। तो आपको गर्मी से बचने के लिए कुछ उपाय हैं उसे करने चाहिए। गर्मी के मौसम में तेज़ धूप और बढ़ा हुआ तापमान शरीर को जल्दी थका सकता है। सही खान पान और सावधानी अपनाकर गर्मी के असर को बचा जा सकता है। गर्मी में शरीर से पसीना रूपी पानी निकलता रहता है हमेशा, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, बेल का शरबत, आम पन्ना, ये सब लेते रहेंगे तो आपके शरीर को ठंडक प्राप्त होती रहेगी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप बहुत तेज होती है। ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर जाने से बचें। यदि बाहर जाना पड़े तो छाता का इस्तेमाल करें, सिर ढक कर रखें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, हल्का और ताज़ा भोजन करें। जैसे गर्मी में भारी ज़्यादा मसालेदार भोजन कम ही लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को शामिल करें, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, दही, मौसमी फल, हरी सब्जियां इत्यादि। शरीर को ठंडा रखें। दिन में 1-2 स्नान करें। कमरे को हवादार रखें। बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर लंबे समय तक ना रहें। लू से बचाव करने के लिए आपको तेज़ गर्म हवा यानी लू से बचना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलने से पहले पानी पी कर जाएं। प्याज साथ में रखने की परंपरा है, इसकी सलाह दी जाती है कि आप प्याज को साथ में रखें। आम पन्ना, सत्तू का सेवन लाभदायक माना जाता है। यदि

चक्कर, कमजोरी या तेज बुखार जैसा लगे तो तुरंत आराम करें और किसी डॉक्टर से जरूर मिलें। आंखों और त्वचा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धूप में चश्मा पहन सकते हैं। चेहरे को साफ पानी से धोते रहें। बहुत देर तक तेज़ धूप में ना रहें। पर्याप्त आराम और नींद भी बहुत ज़रूरी है। गर्मी में शरीर जल्दी थक सकता है। अच्छी नींद और आराम शरीर को ऊर्जा देते हैं। बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखना खासा बहुत ज़रूरी है। बच्चों और बुज़ुर्गों को गर्मी जल्दी प्रभावित कर सकती है। उन्हें समय समय पर पानी और ठंडे पेय पदार्थ पिलाते रहें। गर्मी का मौसम सावधानी और संतुलन का मौसम है। यदि खान पान सही हो और शरीर को पर्याप्त पानी मिले तो तेज़ गर्मी भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकता है। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। आज ज्ञान विज्ञान में बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये ग्लोबल वार्मिंग आखिर होती क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। श्रोताओं, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर गर्मी जो बढ़ रही है, ये क्यों होती है, आखिर किस वजह से ये होती है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। उसके पहले सुनते हैं एक छोटा सा।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना। जब वातावरण में कार्बन

डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य हानिकारक गैस बढ़ जाती है तो वे सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के अंदर रोक लेती है। इसे धरती धीरे धीरे अधिक गर्म होने लगती है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यह आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, फैक्ट्रियों का धुआं और वाहनों से निकलने वाली गैसें इसके मुख्य कारण हैं। सबसे मुख्य कारण होता है पेड़ों की कटाई। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन तेजी से जंगल कटने के कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं भी एक रीजन है। पेट्रोल और डीजल के चलते पहले जो वाहन थे वो बड़ी मात्रा में गैस, जहरीली गैस छोड़ते हैं और वातावरण को गर्म करते हैं। प्लास्टिक और कचरा का जलना भी एक कारण है। कचरा जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। बिजली और ईंधन का अत्यधिक उपयोग भी एक कारण है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। धरती का तापमान बढ़ने से गर्मी बहुत अधिक बढ़ने लगती है। हीट वेव और लू जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ग्लेशियर का पिघलना, बर्फ के पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं जिससे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बाढ़ और सूखा, कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। मौसम का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। खेती पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फसलों की पैदावार कम हो रही है जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहे हैं। पशु पक्षियों का खतरा पर भी इसका खतरा है। कई जीव जंतु और पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होने लगी हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। गर्मी बढ़ने से डिहाइड्रेशन, सांस की बीमारी और त्वचा रोग बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकने के बहुत ही सरल उपाय हैं जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपके पास कार है तो आप बस का यूज कर सकते हैं, ट्रेन का यूज कर सकते हैं, साइकिल चलाएं, बिजली की बचत करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, कपड़े या जूते के बैग का उपयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा अपनाएं, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, पानी और बिजली बचाएं, अनावश्यक उपयोग से भी बचना चाहिए, जागरूकता फैलाएं। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है बल्कि मानव जीवन के लिए एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा खतरा भी है। यदि समय रहते इसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धरती हमारी नहीं है, हम धरती के हैं, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है।

श्रोताओं, हवा तो अब गर्म हो चुकी है, लेकिन चलते चलते बारी है आज के टिप्स की। गर्मी के मौसम में राहत देने के लिए, आपको ठंडक पहुंचाने के लिए सौंफ का शरबत पीना ही चाहिए। अब ये क्यों पीना चाहिए? क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इससे आपको लू लगने का खतरा भी कम होगा। और सौंफ का शरबत कैसे तैयार करते हैं? तो आपको सौंफ पहले से हल्का भून करके पीस करके रख लेना चाहिए, ताकि उसको बस घोलें और बना लें। सौंफ अगर पीसा हुआ रहेगा तो बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसे क्या करना है, ठंडे पानी लेना है और उसमें उस मिश्रण को डालना है, चीनी या फिर मिश्री जो आपको मिलाने का मन हो वो मिलाएं और इसे छाने। इसे ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा पुदीने के पत्ते डालें और इसे पी लें। ये ठंडक तो देगा ही, साथ साथ आपको लू से भी बचाएगा। कार्यक्रम जोहार पलामू में इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दे, नमस्कार और सुनते रहें ये प्यारा सा गीत।

0: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
1: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है, इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
1: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
1: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई,
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
1: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
1: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
1: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओ वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने

0: सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मर्दा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार

0: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण

0: बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
1: सालू मर्दा तिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक, कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ। देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। हाँ। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ।
2: हाँ।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव

0: तो मिलती।
1: सही कहा।
0: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
0: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: जी सुनिए।
5: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
5: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
5: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे, इसको भी डालो।
5: हाँ हाँ,
4: ये देखो
5: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
5: देखा तिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, ये अब कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
5: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
6: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
7: हमारा शहर हो,
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
8: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
0: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
2: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
9: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
2: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करने न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद विविध भारती के कार्यक्रम होगा हमारे मुंबई केंद्र।

0: वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट्स मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर की निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS चतुर्थ के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulides, in New Delhi today. Mr. Christodoulides arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He also visited Mumbai. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Veftes, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulides to India in his current capacity. Prime Minister Narendra Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwani Vaishnaw at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the RJ Kaur Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. The young medic was raped and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's Joint Director East will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. He was targeted in Gojra, Muzaffarabad, where he came out of his college yesterday morning. Burhan, alias Arjuman Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror attacks in Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him an opportunity to meet with ministers from the Quad nations. Punjab police has arrested a Pathankot resident for spying for Pakistan-based handlers by installing internet-linked CCTV camera on the Pathankot-Jammu National Highway 44. Pathankot SSP Daljinder Singh Dhillon told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. Its live feed was shared with Pakistan-based ISI handlers. Police is also looking for his three more accomplices. Union Home Minister Amit Shah today paid tributes to Raja Ram Mohan Roy on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said that through the establishment of the Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Roy awakened people against social superstitions. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium. And that is the end of this news bulletin.

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम, बहुत गर्मी है इधर आजकल, तो पक्के की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्का लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पक जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो कैसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम, हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम, अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमे बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छा हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ
1: चलता रहते हैं।
0: जी जी जी हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जो मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है।
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी, अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं हम तो, गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है, और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी,
1: धर्मेंद्र हेमामालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुसियान है या कोई टसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा। मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा, इस तरह से।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और अब आप बताइए कादिर जी अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम जी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी, अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: ये खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल हाँ आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरवाइ सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार।
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: जय महाराष्ट्र। आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी मेरा। वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लख। हाँ जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी।
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में

0: कौन बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
1: में? मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी। मैम मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं
1: जी। मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम जी। मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ मैं। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम। ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है,
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम कोल्ड

0: क्या है, जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, यू बच्चों को सर भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोटनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
1: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
0: जी मैम यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
1: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
0: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था ऐसे में इसके बहाने बीबीएस के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
1: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
1: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबरे ग्राम सामनापर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमें करवा

0: ठंडा का मौसम है, धान मेवा है, वही तो तीसरे साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, सुनता हो।
1: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
0: गर्मी बहुत है।
1: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
0: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हो।
1: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं? तो कुछ सुनाइए भजन।
0: दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले जोशीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोशीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले काटी।
1: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मैंने प्यार किया लता मंगेशकर एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
1: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। ये है विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

पंकज उधास की आवाज में आपने ये गाना सुना और अब पेश है ये अगला गाना। आवाज है जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की नवीन त्यागी के बोल हैं संदीप गोस्वामी का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है कपिल कुमार ने, धुन बनाई है मानस मुखर्जी ने।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग प्रोग्राम में अब पेश है दिलराज कौर की आवाज में मोहसिन नकवी का कलाम।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोनीता गांधी और शाश्वत सिंह का गाया हुआ, साहिब का लिखा हुआ गाना, समीरा कोपिकर का संगीत है।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना, प्रोफेसर जेके सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव का गाया हुआ ये गाना, रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादा मुरादपुरी ने।

रंगतरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बेन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें। सुनते हैं ये गाना।

0: ये थी आखिरी पेशकश। अब दीजिए रंग तरंग कार्यक्रम से इजाजत।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी

0: उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और इसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों के महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म मिलन का ये गीत सुनिए लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: चला

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इंदिवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: आपने ट्यून किया है दिस
1: बाजार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता,

0: आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
0: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
2: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.T. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The seats are vacated by Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Ajit Pawar and AIADMK MP CV Shanmugam, who were recently elected to the State Assembly. The by-poll will also be held on the 18th of next month. Union Home Minister Amit Shah has said the government will launch the Smart Border Project to make the entire border even more impregnable. Addressing the investiture ceremony of BSF in New Delhi today, Mr. Shah said the project will be equipped with drones, radars, cameras and other technical resources. He said the work is progressing towards developing an impregnable border security framework by integrating all types of technologies into the Border Security Forces security system under the Smart Border concept within the coming 1 year. The Home Minister said the security

0: of international borders must be viewed as a broader territorial responsibility rather than an isolated task to tackle the challenges. Mr. Shah said despite vulnerabilities and multiple challenges, the force has consistently upheld the nation's pride.
1: Padma Vibhushan.
2: BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
1: Nishchint karne ka kaam Sima Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla has congratulated Thiruvanchur Radhakrishnan on being elected as the Speaker of the 16th Kerala Legislative Assembly. In a social media post, Mr. Birla expressed confidence at Mr. Radhakrishnan's vast legislative experience and deep understanding of parliamentary traditions will guide the House with fairness, wisdom and dignity. He wished him a productive and successful tenure ahead. A Delhi court today deferred its decision till the 9th of June on framing charges against Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav, his family members and others in the alleged money laundering case linked to the IRCTC hotel scam. The case is being investigated by the Enforcement Directorate and is based on a predicate offence registered by the Central Bureau of Investigation. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon session today. The Sensex climbed 492 points to 75,675. And with that, we end this news bulletin.
3: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की दो सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची की होटवार जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश। अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिन भर में केवल दो से तीन बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झीकरहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने उड़ीसा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ। पांचवें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इसमें झारखंड की दो सीटें भी शामिल हैं। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी और मतदान 18 जून को कराया जाएगा। झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीटों के लिए चुनाव होगा। झारखंड की बात करें तो चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जबकि जुडिशियल इंक्वायरी अभी जारी है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी।
4: इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया कि इस मामले की पूरी छानबीन जारी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 8 जून का समय निर्धारित किया गया है।
3: झारखंड उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल दोस्ताना लेन देन को कानूनी रूप से वसूले जाने योग्य कर्ज नहीं माना जा सकता, इसलिए फ्रेंडली लोन कानून पर एनआई एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने बिना वैध अनुबंध किए गए 2 लाख रुपए के लेन देन से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया। झारखंड बिजली वितरण निगम ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिना अनुमति फीडर शटडाउन लेने पर रोक लगा दी है। नए आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में अब केवल कार्यपालक अभियंता की अनुमति से ही शटडाउन लिया जा सकेगा। निगम ने दिन में केवल 2 से 3 बार ही संक्षिप्त शटडाउन की अनुमति दी है। पाकुड़ जिले के झीकरहट्टी पूर्वी पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार के लिए हुआ है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि यह पंचायत जिले के अन्य पंचायतों के लिए प्रेरक बनेगा।
5: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है। अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे। आगे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं जिसमें कि महिलाओं के समूह को इंक्लूड किया जाए।
3: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एमडीआई गुड़गांव ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य सेल के भविष्य में लीडर्स तैयार करना है। इसके तहत संयुक्त रिसर्च, केस स्टडीज और कस्टमाइज लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने चालीयामा स्टील प्लांट और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट, चेतावनी बोर्ड और 2 नए चेक पोस्ट बनाने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में जिला क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सांसद मनीष जायसवाल ने विधायक को लक्ष्मण बताते हुए मर्यादा में रहने की सलाह दी।
6: तो उसका पैर भी पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे जो बंद कराएगा, उसका कोई नहीं बंद करा सकता है। छोटे भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा, बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको बनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है। और लाखों क्रिकेट फैंस का इसको दुआ है, कोई बंद नहीं करा पाएगा।
3: वहीं विधायक ने पलटवार करते हुए सांसद को धृतराष्ट्र की संज्ञा दी और जिला क्रिकेट एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए।
7: स्टेडियम मठा बना, लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया, अपना एजमेंट वहां खड़ा किया गया, जो उनका इच्छा होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हजारीबाग स्टेडियम में चलने लगा, ये स्पोर्ट्स के लिए घातक है। हर जगह हजारीबाग के लोगों की सहभागिता होना चाहिए। लड़ाई इस चीज का हो रहा है कि चिट्ठी का बकौती नहीं है।
3: हजारीबाग पुलिस ने इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा जंगल में छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 52 ग्राम ब्राउन शुगर और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह काला कारोबार चला रहे थे।
8: 52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। ये सभी इचाक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जो नेटवर्क है ये चतरा से लिंक्ड है और जहां से ये सामान लाता था उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है, जिस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई वो करेंगे।
3: पलामू जिले के नक्सल प्रभावित छतरपुर में ग्रामीणों ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए एक अनाथ बेटी की शादी कराई। पाटादोहर निवासी बर्ती कुमारी की शादी अर्जुन सिंह से तय कर ग्रामीणों ने इसे संपन्न कराया। इस विवाह का पूरा खर्च पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और मुखिया पूनम जायसवाल ने उठाया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,800

0: रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर अपने फुटबॉल सीजन का समापन किया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में दबदबा बनाने के बावजूद टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ जमशेदपुर 22 अंकों के साथ लीग में पांचवें स्थान पर रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश, अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिन भर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झिकराहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ, पांचवें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सिप्रा बोस को। इनसे सुनते हैं ये ठुमरी। राग है मिश्र खमाज और बोल है साजन अब घर आजा।

0: तो हैं, वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं, देखिए हैं आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौत।

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो जाए, और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी, जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। अच्छा, इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं, जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरे सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए, खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब। श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की। एक और सवाल है, हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीजों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है, हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें जरूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आए। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है। जिया बेकरार है बरसात के लिए, कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है। इसी बीच कुछ पंक्तियां याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूं, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो 20-10 के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग एक सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी जरूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर, मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना और भी कई

चरम रूप भी है, वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग, कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे, बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आशा भोसले की आवाज। विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूं चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहां पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछाकर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है। बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वक्त वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम

चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहा है कि जून की इस तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खौलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओहो, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयां आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयां नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे जमीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किनकी है।

0: 154 points to 23,808 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, lines once again. Prime Minister Narendra Modi's discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10th of next. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for class 9 students from July 1st. IND issues a heat wave over Uttar Pradesh and Punjab till tomorrow and an IPL cricket take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. That ends the news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दो बजे समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई फैसले के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुख भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग रहे हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। इस बात पर भी एक है, ये ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया में जयशंकर ने कहा, दोनों द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है, मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
5: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य

0: परसों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
0: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
4: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
2: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती में सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये गाना हरिहरन की आवाज में, फिल्म का नाम है रोजा।

0: और इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि दोनों सीटों के आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में है।
2: बिल्कुल, ये दोनों सीट महागठबंधन के हाथ में होगा और जहां तक एलायंस पार्टनर को कौन सी सीटें मिलेंगी इस संदर्भ में मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि बता सकूंगा कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करें।
0: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा कि नई सीबीएसई नीति के तहत कक्षा 9 में 2 अतिरिक्त भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। उन्होंने न्यायालय के मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब विद्युत व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने राज्य सरकार से आम जनता को राहत देने के लिए बिजली व्यवस्था में शीघ्र सुधार सुनिश्चित करने की अपील की है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान कोडरमा, रामगढ़ और रांची समेत आसपास के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा, हल्की आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहेगा।

0: बढ़ने का अनुमान है। पलामू, गढ़वा, सरायकेला और जमशेदपुर जैसे जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: काम करती हैं।
1: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: जी जी जी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है जी, तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
1: जी,
0: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
1: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
0: जी जी, बेटा बड़ा है
1: जी
0: और गुड़िया है वो छोटी है अभी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
0: जी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का
1: अच्छा
0: शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे

0: क्या चीज बिनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टूटने का जो होता है
0: जी,
1: वो सब बनाती हूँ। और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज, ये
0: जी
1: सब।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो,
0: जी
1: थानेदार छेलियों।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: दीदी
0: ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप तो यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ जो लाइन आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से प्यार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और
0: जी
1: बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं
0: जी
1: वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं,
0: जी
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की
1: जी
0: केक सिखाती होंगी। तो
1: बिल्कुल।
0: केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो,
0: जी
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है,
0: जी
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का,
0: जी
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो
0: जी
1: हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी
1: बिल्कुल
0: होनी
1: नाप
0: चाहिए
1: तौल।
0: उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा
1: कप्स
0: जाता है।
1: आते हैं। हाँ
0: जी,
1: जी
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले,
0: जी
1: चाहे कोई पतीला ले,
0: जी
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक।
0: जी
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है
0: जी
1: बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं,
0: जी
1: अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है,
0: जी
1: अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको
1: जी
0: ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज
1: जी
0: बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है इसके अलावा, बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था,
0: हाँ जी
1: लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए,
0: जी
1: तो हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो भी भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था,
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम

0: आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से।
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा अब इतना बज गया अब ये आएगा।
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संगीता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आप।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी।
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, अब कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, सब कुछ। सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हमें।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती है यानी आपके घर में।
1: और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है।
1: सबको का हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी
0: जी जी।
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री हैं एकदम
0: जी।
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए, जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा अच्छा लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा गाना
0: ठीक है,
1: सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी जी
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल
1: नहीं, मैं
0: पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी।
1: हेल्दी रहने के लिए, ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी,
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा,
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी आपने इतना प्यारा गाना बताया है, नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, अगर आपको लस्सी बनाना है
0: जी,
1: तो आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के, जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी,
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है
0: जी,
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
0: जी, जी।
1: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी।
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान

0: है जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: जी, सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दरक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दरक्षा जहाँ, आपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दरक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं,
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी, लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादिया मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, काया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है,
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी,
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ,
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पर
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002462, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
1: बाबुल की

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जा यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके

मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया, तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहां क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

रामचंद्र बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद

उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छायागीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से 23 मई से अपने मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित अनमैप्ड मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यह सूची अगले दो सप्ताह तक सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें संबंधित बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज रहेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब विद्युत व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में आम्रपाली परियोजना में कार्यरत एनसीसी लिमिटेड से लेवी मांगने, धमकी देने और आगजनी करने के मामले में पुलिस ने जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य रविंद्र सिंह उर्फ रविंद्र सिंह खरवार को गिरफ्तार किया है। 24 जनवरी को 5 अपराधियों ने कंपनी के ट्रक को रोककर सुपरवाइजर और ड्राइवर से मारपीट की तथा ट्रक में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। झारखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान कोडरमा, रामगढ़ और रांची समेत आसपास के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बिजली बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आज आ की रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है। तेरी एक झलक को तरसती है ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया? बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया? हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां। एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

पलकें काजल से जब बोझिल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती हैं, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

0: उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार, आप सभी साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश्वर और मेरे साथ हैं महिमा। महिमा, आपको भी मेरी ओर से नमस्कार।
1: नमस्कार योगेश्वर, और तमाम साथियों को भी मेरी ओर से नमस्कार और जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और इस गर्मी के मौसम में अपना विशेष ध्यान रख रहे होंगे।
0: स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आप अपना जितना ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा है। इसीलिए कोशिश करें कि पानी की कमी बिल्कुल ही ना हो, हाइड्रेटेड रहें और सीधी धूप से बचें।
1: इसके साथ साथ नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, बेल का शरबत, आम पन्ना का सेवन करें।
0: तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी सहित दूसरे मौसमी फल खाएं, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। खाने में तैलीय मसालेदार भोजन से दूरी बना कर रखें।
1: बिल्कुल, और साथ ही आप कोशिश करें कि सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक, 4 बजे तक बाहर जाने से बचें, और अगर जरूरत पड़ भी जाए तो अपने साथ धूप का चश्मा, सिर पर स्कार्फ या टोपी लगाकर ही जाएं।
0: आप सभी इस देश के मजबूत आधार हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान देना जरूरी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कार्यस्थल पर बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और स्वास्थ्य की बातें तो हो गई, अब हम आपको बता दें साथियों कि आज फिल्म संगीत को नई पहचान देने वाले राम लक्ष्मण की पुण्यतिथि भी है। हम अपने कार्यक्रम श्रमिक लोक के माध्यम से उन्हें शत शत नमन करते हैं।
0: पता है महिमा, राम लक्ष्मण की जोड़ी ने बॉलीवुड के कई फेमस गीतों को संगीत दिया है। उनकी जोड़ी, उनकी दोस्ती भारतीय सिनेमा में हमेशा याद की जाती है। राम लक्ष्मण मतलब विजय पाटिल और सुरेंद्र की जोड़ी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में ही किया था।
1: बिल्कुल, यही नहीं, आज के दिन ही जब विजय पाटिल का निधन 2021 में हुआ था, तब भारतीय सिनेमा ने एक महान संगीतकार जोड़ी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।
0: इनकी दोस्ती की मिसाल हर कोई देते थे। जब 1976 में राम यानी सुरेंद्र का निधन एजेंट विनोद साइन करने के तुरंत बाद हो गया था, तब से विजय पाटिल ने अपने दोस्त की याद को अमर रखने के लिए जीवन भर ही राम लक्ष्मण नाम से संगीत का देना जारी रखा।
1: और आज जब दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे की ओर वे देखना भी नहीं चाहते, ऐसे समय में राम लक्ष्मण की दोस्ती दोस्तों को याद जरूर से करना चाहिए और ऐसी दोस्ती भी निभानी चाहिए।
0: बिल्कुल महिमा, क्योंकि इनकी दोस्ती ने एक से एक बढ़कर संगीत दिया है। दिल दीवाना, बिन सजना के, कबूतर जा जा गाने तब से आज तक लोगों के दिल में अमिट छाप छोड़ दी है।
1: बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, हम आपके है कौन फिल्म के दीदी तेरा देवर दीवाना, पहला पहला प्यार है, मायने मायन गाने तो आज हर शादी में गाए ही जाते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, पता है महिमा, 1999 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं के गाने और धुन तो मुझे इतने पसंद हैं कि मैं बहुत गुनगुनाता रहता हूँ। इसमें जो गाना है नया इसोदा, ये हमारी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने का काम भी करता है।
1: इनकी जोड़ी ने ना सिर्फ हिंदी फिल्मों में संगीत दिया है, पर इसके साथ साथ मराठी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा में भी अपने शानदार संगीत से दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है।
0: बिल्कुल, राम लक्ष्मण की जोड़ी ने 150 से अधिक फिल्मों में अपने संगीत से चार चांद लगा दिया है। कहा जाता है कि इनकी जोड़ी को यह नाम मशहूर मराठी अभिनेता और निर्माता दादा कोंडके ने दी थी।
1: राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन को आज हर कोई जानता है।
0: बिल्कुल,
1: और राष्ट्रीय प्रोडक्शन में दिए गए उनके संगीत ने इस प्रोडक्शन को एक नया जीवन दान दे दिया और इनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि इस बैनर के स्थायी संगीतकार के रूप में राम लक्ष्मण को रखा गया था।
0: हम कह सकते हैं कि भारतीय शादियां इनके गीत संगीत के बिना बिल्कुल अधूरी है।
1: बिल्कुल,
0: भारतीय सिनेमा इनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। फिर से हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें सत सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं इनके दिए गए संगीत का यह गीत।

0: घरागान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते वार्ता। महिला विकास में संस्कृति एवं असामाजिक चुनौतियां, वार्ताकार हैं स्वाति सहाय।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं स्वाति सहाय, SSMS डिग्री कॉलेज अंग्रेजी की विभागा अध्यक्ष। आज मैं महिला विकास में सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महिला जो सृष्टि की जननी है, परिवार की आधारशिला है, समाज की पहली शिक्षिका है, उसकी प्रगति के बिना किसी भी समाज का विकास अधूरा है। लेकिन आज भी महिला विकास कई सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं से जूझ रहा है। किसी भी समाज की तरक्की उसकी महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है। अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी परिवार, समाज और देश आगे बढ़ेगा। लेकिन दुख की बात है कि आज भी महिला विकास कई सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं से घिरा हुआ है। उदाहरण के तौर पर, सांस्कृतिक परंपराओं में जकड़ी सोच। हमारा समाज सदियों से चली आ रही परंपराओं से बंधा हुआ है। कई परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन कुछ परंपराएं आज भी महिलाओं को सीमाओं में बांधती हैं। लड़कियों को घर की इज्जत कहकर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। निर्णय लेने का अधिकार अक्सर पुरुषों तक सीमित रहता है। भारत में कई परंपराएं ऐसी हैं जो महिलाओं को सम्मान देती हैं, लेकिन समय के साथ उनका गलत अर्थ निकाला जाने लगा। कभी कभी परंपरा के नाम पर महिलाओं की शिक्षा, रोजगार या स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है। जब लड़कियां घर संभालने के लिए होती हैं, यह सोच आज भी कई घरों में मौजूद है। जब समाज की मानसिकता ही महिलाओं को बराबरी ना दे तो विकास का रास्ता कठिन बन जाता है। दूसरी ओर पितृसत्तात्मक सोच जो है वो हमारे समाज में लंबे समय से रहा है, जो कि पुरुष प्रधान रहा है। यह सोच महिलाओं की क्षमता को कम आंकती है। कई बार बेटियों के बजाय बेटों को प्राथमिकता दी जाती है, शिक्षा में, खान पान में और अवसरों में भी। वहीं सामाजिक सुरक्षा भी महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी चुनौती है। घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, ऑनलाइन उत्पीड़न, ये सभी महिलाओं की समस्या को ऐसी समस्या है जो महिलाओं को खुलकर आगे बढ़ने से रोकती। छेड़छाड़, हिंसा और अपराधों का डर महिलाओं को अक्सर सार्वजनिक स्थानों से दूर रखता है। जब तक महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तब तक वे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह नहीं दिखा पाएंगी, तब तक वे स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सामाजिक चुनौतियां भी, जैसे कि शिक्षा में असमानता। शिक्षा की बात करें तो आज भले ही हम कहते हैं कि हर लड़की पढ़े, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। ग्रामीण क्षेत्रों में व कई जगह शहरी क्षेत्रों में भी बाल विवाह, गरीबी, परंपरागत सोच अब भी लड़कियों की शिक्षा में बड़ी बाधाएं हैं। आज भी कई क्षेत्रों में लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूल दूर है, सुविधाएं नहीं है या परिवार पढ़ाना नहीं चाहता। शिक्षा की कमी सबसे

0: सबसे बड़ी सामाजिक बाधा है। जब शिक्षा अधूरी रह जाती है तो आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और आत्मविश्वास पर सीधा असर पड़ता है। वहीं महिलाओं को कम उम्र में शादी करने की मानसिकता आज भी बहुत जगह मौजूद है। विवाह को लड़की के जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेना भी विकास में बाधा है। आर्थिक निर्भरता की बात करें, अगर महिला का अपना आर्थिक आधार नहीं है तो वह अपने फैसले खुद नहीं ले पाती। कई महिलाओं को नौकरी करने से रोका जाता है, घर से बाहर मत जाओ, सुरक्षा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ऐसी बातें उन्हें पीछे रोकती हैं। आज भी देश की बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। आर्थिक निर्भरता कई समस्याएं पैदा करती है, जैसे कि निर्णय लेने की शक्ति कम होना, आत्मनिर्भरता का अभाव, रोजगार में अवसरों की कमी। महिला विकास तभी संभव है जब वो आर्थिक रूप से सशक्त हो। सांस्कृतिक अपेक्षाएं और दोहरी जिम्मेदारियां। महिलाओं से अक्सर अधिक अपेक्षाएं की जाती हैं, घर भी संभालो, काम भी करो, बच्चों की देखभाल भी करो, लेकिन इन्हीं भूमिकाओं को निभाते निभाते कई बार उनके व्यक्तिगत विकास के अवसर सीमित हो जाते। समान जिम्मेदारियों का बंटवारा महिला विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रौद्योगिकी और डिजिटल गैप। आज का युग डिजिटल युग है। डिजिटल युग में भी बहुत सी महिलाओं के पास मोबाइल, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं कर पाती, डिजिटल जानकारी से वंचित हैं, ऑनलाइन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाती हैं। इससे उन्हें नए कौशल सीखने और अवसर पाने में कठिनाई होती है। यह डिजिटल अंतर भी महिलाओं के विकास में एक बड़ी बाधा बनता है। वहीं मानसिकता सबसे बड़ी चुनौती है। कानून बने हैं, योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता का बदलाव है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, महिला विकास अधूरा रहेगा। अब सवाल यह है कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे हो। हम सभी जानते हैं कि बदलाव संभव है, शिक्षा, जागरूकता और समान अवसर देकर। हमें जागरूक करना होगा अपने आप को, लोगों को यह बताकर कि महिलाओं को इन चुनौतियों से उभारने में हमें मदद करनी है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज वास्तव में सशक्त बनेगा। यह जिम्मेदारी हमें सामूहिक तौर पर लेनी होगी। सबसे पहले मानसिकता बदलनी होगी, लड़की को बोझ नहीं बल्कि शक्ति मानने की सोच को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, हर लड़की को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अधिकार देना होगा। आर्थिक सशक्तिकरण, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता के अवसर बढ़ाने होंगे। सुरक्षा और कठोर कानून। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर त्वरित न्याय और सख्त कार्रवाई जरूरी है, इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। परिवार और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बेटियों को प्रोत्साहित करना, उनके निर्णयों का सम्मान करना और उनके सपनों को उड़ान देना हम सबकी जिम्मेदारी है। महिला विकास की असली शुरुआत घर से होती है। अगर परिवार साथ दे दे तो कोई चुनौती बड़ी नहीं रहती। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखा रही हैं, विज्ञान, खेल, राजनीति, व्यवसाय, कला, हर जगह वे आगे बढ़ रही हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि उनके रास्ते की बाधाएं हटाएं, उन्हें बराबरी और सम्मान दें और विश्वास के साथ आगे बढ़ने दें। महिला किसी भी समाज और देश की रीढ़ होती है। यदि महिला शिक्षित, सक्षम और सशक्त होगी तो पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र प्रगति करेगा। महिला विकास इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, चाहे वह घर की जिम्मेदारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो, विज्ञान या व्यवसाय। महिला का विकास उसे आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और गलत अत्याचारों का विरोध कर पाती है। आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें समान अवसर, सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी है। यदि हम महिलाओं के विकास पर ध्यान देंगे तो सामाजिक कुरीतियां कम होंगी, परिवार मजबूत होगा और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए महिला विकास न केवल महिला के लिए बल्कि पूरे समाज के भविष्य के लिए आवश्यक है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि महिला विकास केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, यह पूरे समाज और देश के विकास का आधार है। जब महिला आगे बढ़ती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, एक पीढ़ी आगे बढ़ती है और राष्ट्र आगे बढ़ता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर वह वातावरण बनाएं जहां हर महिला स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो और गर्व से कह सके, मैं भी इस देश के विकास की बराबर की भागीदार हूँ। धन्यवाद।
1: मैंने अभी आपने सुना वार्ता, महिला विकास में सांस्कृतिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ। वार्ताकार थी स्वाति सहाय, और अब हम चर्चा

कटाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संतुलित और हरित पर्यावरण को बनाए रखना चाहिए। प्रकृति से प्रेम ही जीवन का सच्चा प्यार है, और प्रकृति है तो हम हैं। तो प्रकृति को हमेशा सुरक्षित रखें। जो प्रकृति हमें हमेशा सब कुछ देती है बिन मांगे, हम उसे बस इतना दें कि उसको सुरक्षित रखें। जैव विविधता केवल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है श्रोता बहनों, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के संतुलन की आधारशिला है। हर छोटा बड़ा जीव, हर पौधा और प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण जैव विविधता खतरे में है। यदि हम अभी से सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को एक असंतुलित और संकटग्रस्त पर्यावरण का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे और अधिक से अधिक पौधारोपण करेंगे, जल, जंगल और जमीन पर संरक्षण करेंगे, पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनेंगे, प्लास्टिक और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान देंगे। प्रकृति हमें जीवन देती है, इसलिए उसका संरक्षण हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। जैव विविधता का संरक्षण सुरक्षित भविष्य का निर्माण है। तो आइए हम सब संकल्प लें कि प्रकृति को सुरक्षित रखें। और अब आइए सुनते एक मधुर संगीत।

मधुर संगीत के बाद एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। श्रोता बहनों, आज हम बातें करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। केवल एक दिवस नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाने का अवसर है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, जलचर और उनके प्रकृति आवासों की विविधता। आज बढ़ते शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक प्रजातियां संकट में हैं। जब कोई जीव या पौधा विलुप्त होता है तो केवल एक प्रजाति नहीं खोती बल्कि प्रकृति का संतुलन भी प्रभावित होता है। मधुमक्खियां, तितलियां, पक्षी और छोटे छोटे जीव हमारे खेती, भोजन और पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जैविक विविधता की रक्षा केवल पर्यावरण प्रेम नहीं बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमने कहा कि खेत खलियानों में भी एक की मेहनत नहीं होती है, जीव जंतु, पशु पक्षी सबकी मेहनत होती है। पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना हमारे संकल्प में शामिल हो। जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्लास्टिक का कम उपयोग, पक्षियों और जीवों के प्रति संवेदनशील होना, स्थानीय और पारंपरिक जैव विविधता को बढ़ावा देना। इस वर्ष की थीम भी हमें यही संदेश देती है, प्रकृति और विकास साथ साथ चल सकते हैं यदि जिम्मेदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ा जाए तो। और यही कहेंगे कि प्रकृति की हर धड़कन में जीव बसता है, जैव विविधता सुरक्षित रहे तो भविष्य हंसता है और धरती की सुंदरता उसकी विविधता में है और उसका भविष्य हमारी जागरूकता में है।

अगर हम जागरूक हैं तो हमारी जैविक विविधता की हम बात कर रहे हैं ये सुरक्षित है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, बस ये मांगती है कि हमें सुरक्षित रहो, समय पे पानी देना और पेड़ पौधों की सुरक्षा करना। अगर किसी कारण अगर पेड़ को हम काट रहे हैं तो उस जगह पे दूसरे पेड़ को ज़रूर लगा दें, क्योंकि हम जब हमारा शरीर क्षतिग्रस्त होता है तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, पेड़ पौधे से भी ये आफत आती है, लेकिन उससे बचने के लिए अगर एक पेड़ हम काटते हैं तो दूसरा पेड़ हम ज़रूर लगाएं। साथ ही ये भी ख्याल रखें कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में जल का हमारा बहुत महत्व है, तो जल को भी सुरक्षित रखें। जिस हिसाब से तेज भीषण ये गर्मी चल रही है उस हिसाब से आज जल है, कल है या नहीं है ये हमें पता नहीं, लेकिन जो है उसे सुरक्षित रखने में हमारी भलाई है, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक लगातार ये तपती गर्मी हमारे साथ है। अभी 2-3 दिन के अंदर और बहुत गर्मी बढ़ने वाली है, भीषण गर्मी की चपेट में हम हैं। ऐसे में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, पेड़ पौधों को कैसे सुरक्षित रखें, पानी को कैसे सुरक्षित रखें, संरक्षित करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जितना कम हो सके जल को गिराएं, जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी का उपयोग करें, ज़रूरत से ज़्यादा नल को ना खोलें, जितने में काम चल सके उसे चलाएं, और आपके पास अगर पानी है और आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं तो उस समय ये भी याद करें कि जिसके पास नहीं है, जो रात भर जग कर कोसों मीलों दूर साइकिलों पर ये पानी ढोते हैं, पर उनके बारे में अगर आप सोच लेंगे तो पानी का बहाव कम करना शुरू हो जाएगा। अगर पानी आपके कपड़े धोते हैं उसके पानी बचे तो नालियों में, नाली में डालिए, बाहर आंगन में डाल दें, उससे साफ पानी है तो पोंछा में इस्तेमाल आप कर सकते हैं पानी का, उससे भी अगर साफ पानी बचे तो आप गमले में डाल सकते हैं। गमले में कपड़े के धोए पानी को डालने से कोई गमला ख़राब नहीं होगा, बजाय वो सुरक्षित रहेगा। अगर आप मछली टैंक रखे हैं, एक्वेरियम रखे हैं, तो उसके पानी को जैसे 3 बाल्टी पानी आपने निकाला, उसे नए पानी डाले उसमें, तो उस पानी को आप पौधे में डाल दें, उससे बहुत अच्छे पौधे का ग्रोथ होगा और पानी भी आपका बर्बाद नहीं होगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो पानी सुरक्षित रहेगा, और जैव विविधता की हम बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो भी सुरक्षित होगा। इसी चर्चा के साथ हमें दीजिए इजाज़त, कार्यक्रम घर आंगन से।

आह्वान किया। पाकुड़ पहुंचे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय प्रसाद ने व्यवहार न्यायालय और मंडल कारा का निरीक्षण कर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और बंदियों से बातचीत की। उन्होंने मंडल कारा में हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मजदूरी और पोक्सो कानून पर लोगों को जागरूक किया गया। हजारीबाग के बरही प्रखंड कार्यालय में

शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों के लिए आकस्मिक योजना और वैकल्पिक फसलों पर चर्चा हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरीय वैज्ञानिक कृष्ण प्रकाश ने किसानों को कम अवधि वाली फसलों की खेती अपनाने की जानकारी दी। जमशेदपुर में पर्वत और नदी संरक्षण विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में प्रस्तावित भारतीय पर्वत निरंतरता एवं सुरक्षा अधिनियम 2026 पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने पर्वतों को जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की आधारशिला बताया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

ग्रामीणों और कृषकों को संबोधित कार्यक्रम आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप सुनेंगे गर्मी के मौसम में पशुओं का रखें विशेष ख्याल, साथ ही साथ आप सुनेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे से लेकर भेंटवार्ता, विषय मृदा कटाव से सुरक्षा और जल संरक्षण। इस विषय पर इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आइए जानते हैं गर्मी के मौसम में पशु का रखे विशेष ख्याल। जी हाँ श्रोताओं, गर्मी के मौसम में पशु का विशेष ख्याल रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी सेहत, जीवन और दूध उत्पादन की क्षमता बेहतर बनी रहे, बरकरार रहे, यह ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि तेज धूप, लू यानी कि गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान पशु को काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित करता है, और पशु को छोड़ दे तो इंसानों के लिए तो ये काफ़ी बुरे तरीक़ा से ये प्रभाव पड़ता है। तो इंसानों से की तरफ जब ये तेज धूप का खराब पड़ता है तो पशु के लिए सोच सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या बनती होगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण हीट स्ट्रेस यानी कि ताप तनाव का शिकार पशु प्राय ज़्यादा होते हैं। उनमें रोग से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, बीमार भी पड़ने लगते हैं, दूध उत्पादन में भी भारी गिरावट आ जाती है श्रोताओं। इसलिए गर्मी को मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें कि वे सुरक्षित भी रहें और स्वस्थ भी रहें। जी हाँ श्रोताओं, पशुओं को सीधे धूप और गर्म हवा से बचाना ही सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। पशुशाला या शेड ऐसा होना चाहिए जहां हवा के आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो। बंद और उमस भरे कमरे में पशुओं का दम प्रायः घुटने लगता है। सेट की छत का जो भी प्रबंधन करें श्रोताओं, तो टीन या एस्बेस्टस का ही दें। हालांकि वो बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में उस टीन या एस्बेस्टस के ऊपर में पुआल, सूखी घास या बोरी डाल दें और दोपहर में पानी को छिड़क दें। छत पर सफ़ेद चूने का पेंट भी करें, इससे कहीं ना कहीं तापमान काफ़ी कम हो जाता है।

हो सके तो पशुशाला में पंखे या कूलर लगाएं। हालांकि बड़े बड़े फार्म में पानी की बौछार करने वाले यंत्र यानी कि फॉक्स भी लगाए जाते हैं, जिससे कि वहाँ का वातावरण जो है वो ठंडा रहे। पर्दे के रूप में टाट के बोरे का भी उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, शेड के जो खुले हुए भाग होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उसमें जूट या टाट के भी बोरे लटका सकते हैं और उन पर पानी का छिड़काव करते रहें। इससे अंदर आने वाली जो हवा होगी वो प्रायः ठंडी हो जाएगी और लू का जो असर है वो कम हो जाएगा। गर्मी में पशुओं को पास पास बिल्कुल ही ना बांधे, क्योंकि ज़्यादा एक साथ होने से शरीर की गर्मी बढ़ जाती है श्रोताओं। और सर्दियों की तुलना में श्रोताओं, गर्मियों में पशु को दुगने पानी की जरूरत पड़ती है। पानी की कमी से भी प्रायः पशु जो है वो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए इस बात को ख्याल रखें कि 24 घंटे में 4 से 5 बार उन्हें जरूर पानी पिलाएं, और जब भी पानी दे साफ और ताज़ा पानी ही दे। इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो और न ही फ्रिज का ठंडा पानी हो। कुएं या फिर समरसेबल से जो भी हो, ताज़ा पानी ही सबसे अच्छा होता है। और पानी की टंकियों को भी छाया में रखें और उन्हें जूट की बोरियों से ढककर रखें, जिससे कि वो पानी भी ठंडी रहे। जी हाँ श्रोताओं, ज़्यादा पसीने और लार के कारण भी पशु के शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। इसलिए पानी में थोड़ा सा साधारण नमक या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर मिला करके पशु को पीने के लिए दें। इससे पशु के शरीर में पानी की कमी प्रायः नहीं हो पाती है। बात करते हैं श्रोताओं खान पान की। ऐसा अक्सर देखा गया है कि गर्मी के दिनों में पशुओं को भूख प्रायः कम लगते हैं, लेकिन शरीर को ऊर्जा ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए आहार पर भी विशेष ध्यान देना होता है। दोपहर के समय तेज तापमान में पशु को भारी भोजन या चारा ना दें। चारा खिलाने का सबसे सही समय है सुबह का भोर यानी कि धूप निकलने से पहले, और शाम का समय यानी कि ठंडा होने पर। हरे चारे की बात जब हम करते हैं श्रोताओं, तो मौसम में आहार में हरे चारे जिसमें कि बरसीम, जई, नेपियर, घास, मक्का की मात्रा आप दे सकते हैं। हरे चारे में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है जो पाचन में मदद करती है श्रोताओं। पौष्टिक और सुपाच्य दाना दे, पशुओं को ऊर्जा से भरपूर संतुलित दाना का मिश्रण दे। दाने को पानी में भिंगो कर खिलाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। गर्मी में पशुओं के शरीर में पोषक तत्व तेजी से नष्ट होते हैं श्रोताओं, इसलिए प्रतिदिन उनके भोजन में 50 से 60 ग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले मिनरल मिक्सचर जरूर दें। इससे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और दूध का जो उत्पादन है श्रोताओं वो भी बना रहता है। गर्मी के दिनों में पशुओं के शरीर को तापमान को भी नियंत्रित करना आवश्यक है, और यह सबसे अच्छा तरीका है श्रोताओं कि इन्हें नहलाना। जी हाँ, दिन में 2 बार नहलाएं। गाय और भैंस दोनों को कम से कम 2 बार यानी कि सुबह में और दोपहर के बाद ठंडे पानी से अच्छे से इन्हें नहला दें। हालांकि देखा जाता है कि भैंसों की त्वचा प्रायः काली होती है और मोटी भी होती है, और उनमें पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो कम होती है, इसलिए उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। और तो हो सके कोई साफ तालाब या पोखर हो तो उन्हें कुछ समय के लिए वहाँ जाने दें, पानी में बैठने दें। गर्मी में गंदगी के कारण भी मक्खी मच्छर तेजी से पनपते हैं श्रोताओं, बीमारियां भी फैलती हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित सफाई और कीटाणुनाशक दवा का भी छिड़काव करते रहें। अब हम बात करते हैं श्रोताओं कि किसी भी कारणवश अगर किसी भी पशु को हीट टेस्ट हो यानी कि लू लग गया हो, तो उसके लिए हमें उसका उपचार करना भी आवश्यक है। और उपचार हम तभी करेंगे जब हम उनके लक्षणों को पहचान लेंगे। जी हाँ श्रोताओं, जब हीट स्ट्रोक या लू लगते हैं तो पशु जोर जोर से हाँफने लगते हैं, मुंह से ज़्यादा लार भी गिरने लगते हैं, जीभ को बाहर निकाल कर वो सांस लेते हैं, और शरीर का जो तापमान है वो 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी हो जाता है। आंखें लाल, पशु सुस्त होकर ज़मीन पर प्रायः गिर जाता है, और दूध के उत्पादन में भी अचानक गिरावट आ जाती है। तो वैसी स्थिति पर श्रोताओं इसका तत्काल उपचार भी करना जरूरी है। तुरंत इसे ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, उनके सिर और पूरे शरीर पर ठंडा पानी डालें, जब तक शरीर का तापमान कम ना हो पानी डालते रहें। पशु को पीने के लिए ग्लूकोज, नमक

0: और चीनी का घोल या फिर प्याज का भी रस दे सकते हैं, और हो सके तो स्थानीय जो भी पशु चिकित्सक हो उनसे आवश्यक सलाह लेकर उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दे। तो इस तरीके से लू से भी बचा जा सकता है, हीट स्ट्रोक से भी बचा सकता है। तो लक्षण को पहचान कर तुरंत उसका इलाज करना जरूरी है श्रोताओं। और हम बात करते हैं श्रोताओं कि टीकाकरण की, तो गर्मी और मानसून के शुरुआत में ही यानी कि संधि काल में कई घातक बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। इसलिए गर्मी का मौसम शुरू होते ही या उसके ठीक पहले पशु को गलघोटू और खुर पका का मुंह पका का टीका जरूर दिलवा दे। और मौसम बदलने पर पशु के पेट में कीड़े होने की भी संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में कृमिनाशक भी दिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य श्रोताओं कि इस गर्मी के मौसम में देखा जाए तो पशुपालकों के लिए पशुधन ही असली संपत्ति है। इसलिए गर्मी के 3 से 4 महीनों में थोड़ी सी भी लापरवाही अगर करते हैं तो इसका परिणाम पशु को गंभीर बीमार होना पड़ता है, इसका आर्थिक नुकसान भी श्रोताओं उठाना पड़ सकता है। और वहीं यदि हम आवास को ठंडा रखें, पर्याप्त ताज़ा पानी दें, खान पान का समय बदल दें, उचित टीकाकरण कराएँ तो पशु इस कठिन मौसम को भी आसानी से पार कर लेते हैं। तो श्रोताओं सजग रहें और अपने पशु को लू से बचाएं और उसका विशेष ख्याल रखें, तभी हम अपने पशु से भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो श्रोताओं ये तो थी बातें कि गर्मी के मौसम में पशुओं का रखें विशेष ख्याल। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे से लेकर भेंटवार्ता, विषय है मृदा कटाव से सुरक्षा और जल संरक्षण।
1: खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा की। जी हां किसान बंधु, हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है और इसके साथ ही जल धारण क्षमता जो है भूमि की वो भी निम्न स्तर पर जा चुकी है। कई तरह की तकनीकियां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेतों खलिहानों में उतारी गई है, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। और आज मृदा एवं जल संरक्षण से संदर्भित विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार, झारखंड के सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार और प्रणाम।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों के सामने जो प्रमुख मुद्दा है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मृदा की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो क्षीण होती जा रही है, उर्वरा शक्ति जो कम होती जा रही है, साथ ही जल धारण क्षमता जिसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, हमारे किसान भाई इसका निदान कैसे करें?
2: किसान भाई, सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो है मिट्टी और जल का जो प्राकृतिक संसाधन जो मिला हुआ है, ये जो है अनमोल है। इसको सिर्फ इसकी रक्षा की जा सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसका उत्पादन नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: ये जो है हमारे प्रकृति में बहुताय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसके जो है गुणवत्ता और इसके जो है उपयोग में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की भिन्नताएँ पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें भारी कमी आई है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षीण होने का एक प्रमुख कारण है कि अब जैसे बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो है पानी बहता है, तो पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बह जाती है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की जो है 15-20 से 25 सेंटीमीटर तक ही उर्वरा शक्ति रहती है, और उसके नीचे की मिट्टी जो है वो सही नहीं होती है, वो खेती करने योग्य नहीं होती है। इसलिए उसका जो है संरक्षण करना, उस मिट्टी को जल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए तरह तरह की उपाय जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बताते हैं, और आज उसी पर हमको विशेष चर्चा करनी है।
1: जी हाँ, और वो प्रमुख तकनीकियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं?
2: वो प्रमुख तकनीकी जो है किसान जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो खेत हमारे हैं वो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत है।
1: जी जी।
2: और उसमें जो है किसान जो है वो सबसे पहले जो है कंटूर फार्मिंग करेंगे, जैसे खेत की जुताई करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन जो अंतिम जुताई उसकी करें वो जो है वो स्लोप के विपरीत करें। स्लोप के दिशा में जुताई ना।

0: करें। इसके बाद जो है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी बह करके आता है वो कुंडों में जो है वो रुक जाता है, रुकता है, जिसके चलते जो है हमारी मिट्टी जो है नहीं बह पाती है।
1: हाँ,
0: इसलिए जो है आप अंतिम जुताई हमेशा जो है
1: स्लोप
0: वो
1: में नहीं करें।
0: स्लोप में के साथ ना करें, स्लोप के विपरीत करें। दूसरा ये कर सकते हैं किसान भाई जो है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार खेती।
1: अच्छा,
0: पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी बहती है, तो आप जो है एक लाइन जो है इस तरह की फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को रोकती हो, और
1: अच्छा,
0: दूसरे लाइन में जो है ऐसी फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को नहीं रोकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लाइन मक्का लगा रहे हैं तो एक लाइन जो है आप मूंग लगाइए, तो मक्का यदि मिट्टी के बहाव को नहीं रोकेगा तो मूंग रोक देगा,
1: फिर दूसरे लाइन में
0: और फिर
1: आप
0: दूसरे लाइन में फिर आप मक्का
1: मक्का पर आ
0: लगाइए, फिर
1: जाइए।
0: उड़द लगा मूंग लगाइए। तो ऐसे कर इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है पट्टीदार खेती कहते हैं। तो
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह की खरीफ फसलों में भी ज़्यादा ही हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है हमारी कमज़ोर होती है, मिट्टी बह जाती है।
1: जी जी
0: तो ऐसे केसेस में जो है देखा जाता है कि यदि आप पट्टीदार खेती कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है मिट्टी भी बचती है और पानी भी बचता है
1: अच्छा
0: हमारा।
1: अच्छा
0: इसके बाद जो है आप ये काम कर सकते हैं कि वेजिटेटिव जो है
1: फार्मिंग।
0: बंड बना सकते हैं,
1: अच्छा,
0: वेजिटेटिव बंड बना सकते हैं। जैसे कि
1: हाँ,
0: जहाँ जहाँ पर ज़्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पर मेड़ों पे जो है आप जो है सजीव बंध जिसको कहते हैं, जैसे कि मूझ की घास हो, मूझ हो गया,
1: अच्छा,
0: या मतलब कि आपका और भी जैसे दीननाथ घास हो गया, तो इस तरह की
1: ये सब
0: घास
1: रोकेंगे।
0: ये सब जो क्या करता है कि वो पानी को बहने नहीं देता है, मिट्टी को रोक देता है वहाँ पे। ये आप काम कर सकते हैं। ऐसे करके भी इसके अलावा भी जो है आप उसमें बंडिंग कर सकते हैं। जैसे
1: अच्छा,
0: कि यहाँ पर झारखंड में हमारे खेत जो हैं वो छोटे छोटे हैं, इसके पीछे कारण है। छोटे छोटे इसलिए हैं कि वो जितना स्लोप उसका कम रहेगा उतना ही मिट्टी का इरोजन कम होगा।
1: अच्छा,
0: मिट्टी का जो कटाव होता है, यदि मिट्टी का स्लोप बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से हम बंडिंग नहीं किए हुए हैं तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा
1: तो
0: हो
1: ज्यादा हो
0: जाएगा।
1: जाएगा।
0: इसीलिए खेत को यहाँ पे छोटे छोटे बनाया जाता है ताकि मतलब कि उसकी जो स्लोप की हमारी लंबाई है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव जो है हमारा रुक जाएगा।
1: रुक जाएगा, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से जो है हम उसमें मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा जल के संरक्षण करने के लिए जो है बहुत तरह की उपाय है। उसमें जो है जल का संरक्षण करने के लिए आप जो है तालाब का, यहाँ झारखंड में कंसेप्ट है कि तालाब का निर्माण कर
1: डोभा का
0: सकते हैं,
1: निर्माण करवा दीजिए।
0: डोभा का निर्माण करिए। जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में,
1: हाँ,
0: तो उसके पीछे कारण यही है कि जो आपका खेत का अंतिम सिरा है वहाँ पर आप डोभा का निर्माण कर दीजिए।
1: अच्छा,
0: और डोभा जो है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, मतलब कि 10 फीट गहरा और जो है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा,
1: इतना काफी है।
0: इतना काफ़ी है ताकि खेत का पानी जो है आपके उसमें जमा हो जाएगा।
1: और इसके अंदर जाएगा,
0: हाँ, आज जो आप जब आप जरूरत पड़ेगी तो उससे जो है आप निकाल सकते
1: निकाल भी
0: हैं।
1: सकते हैं, बिल्कुल।
0: दूसरा उसका उपाय है कि आप तालाब का जब भी निर्माण करें तो वो जो है आप जैसे कि यहाँ की जमीन जो है ऊपर नीचे है, जैसे ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन और नीचे की जमीन, तीन तरह की जमीन यहाँ पे है। तो यदि आप ऊपरी जमीन में आप तालाब बना रहे हैं तो ये देख करके बनाएं तालाब की उसका जो है कैचमेंट एरिया कितना है।
1: अच्छा,
0: मतलब कैचमेंट एरिया से किसान इसको ऐसे समझे कि उसमें पानी आने का जो है
1: साधन
0: मैंने
1: कितना है।
0: साधन कितना, कितनी दूर से पानी उसमें आ सकता है।
1: अच्छा,
0: यदि पानी का आने का साधन वहाँ पे है तो जो है वहाँ तालाब का निर्माण करें
1: अच्छा,
0: ताकि मतलब कि बारिश का पानी जब हो तो वो तालाब में आ जाए। ऐसी जगह तमाम हम लोग देखे हैं कि ऐसी जगह तालाब भी बन जाते हैं जहाँ पानी का कोई आगमन नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है तालाब भर नहीं
1: भर नहीं
0: पाता।
1: पाता, हाँ, सूख जाता है फिर।
0: हाँ, तो वो तालाब के निर्माण में एक और सावधानी रखनी है कि तालाब जब भी बनाए वो एक निश्चित लंबाई चौड़ाई और गहराई का रहे, जैसे कि मैंने 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा
1: जी
0: और जो है 10 से 12 फीट गहरा हो, और उसकी जब खुदाई कराएं जेसीबी से या अपने किसान जो है अपने से भी उसी खुदाई कराते हैं, तो उसकी जब भी खुदाई कराएं तो उसमें जो है उसकी जो मेड़ दे

0: वो तीन तरफ से ही मेड़ दे, एक तरफ से उसको खुला रखे,
1: अच्छा,
0: ताकि उससे पानी आ सके। बहुत जगह देखा जाता है कि वो चारों तरफ से मेड़ दे दी जाती है,
1: इसके चलते जो है
0: वो जो है पानी आ नहीं पाता है तालाब में। तो किसान भाई को हम सलाह देंगे कि मैंने उसको मेड़ जो भी बनाए वो तीन तरफ से बनाए, और मिट्टी की जो कटिंग करेंगे उसको, वो जो है मिट्टी कटिंग करने के 3 से 4 फीट बाद जो है मिट्टी को डाले।
1: अच्छा।
0: जैसे कि आप मिट्टी की कटाव यहाँ से कर रहे हैं तो उससे 3 फीट छोड़ करके मिट्टी को फेंके, जिसको जो है हम लोग बर्म कहते हैं, वो बर्म के ऊपर मिट्टी ना रहे।
1: अच्छा।
0: ताकि जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद मिट्टी बहती है तो वो तालाब में सीधे चली जाती है।
1: अच्छा।
0: तो वो जो है जो बर्म जब रहेगा तो वहां पर मिट्टी पानी जो मिट्टी जो है तालाब के अंदर जो है कम आएगी। पहले साल जब नया तालाब बनता है तो उसमें जो है मिट्टी ज्यादा आती आ जाती है। उसके पीछे कारण है कि जहां से वो खुदाई करता है लोग तालाब की, वहीं पर मिट्टी फेंक देता है, और बारिश हुई है तुरंत मिट्टी जो है बह करके तालाब।
1: अच्छा, बांध पर भी तो वृक्ष लगा सकते हैं?
0: हाँ, बांध पर वृक्ष लगा सकते हैं, वो भी मिट्टी के आपको कटाव को रोकेगा। इसके अलावा जो भी तालाब बनाए तो उसको एक निश्चित स्लोप दे, जैसे कि 1:1 हम लोग कहते हैं या 1:2 कहते हैं, माने 1:1 या 1:2।
1: अच्छा।
0: जैसे कि 1 फीट गहरा करे,
1: हाँ,
0: तो 1 फीट जो है चौड़ा करे, फिर 1 फीट गहरा करे, फिर 1 फीट चौड़ा करे,
1: सीढ़ी नुमा
0: तालाब बनाना चाहिए। डायरेक्ट उसकी जो है खुदाई नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है कि स्लोप जब ज्यादा, जितना ज्यादा स्लोप रहेगा मिट्टी कटाव उतना कम होगा।
1: हाँ,
0: और सीधा बिल्कुल हम काटेंगे तो वो हमारी मिट्टी जो है कोलैप्स होने का, तालाब जो है वो
1: खतरा,
0: हाँ, भंसने का खतरा रहता है, तालाब में जो है भंस जाता है और मिट्टी भर जाता है, जिसको हम लोग सिल्टेशन कहते हैं। और सिल्टेशन हो जाएगा तो पता चले कि आपका जो है तालाब 12 फीट गहरा था, अब पहले ही साल में दूसरे साल में देखेंगे कि तालाब 6 फीट हो गया।
1: बिल्कुल,
0: इसके पीछे कारण यही होता है कि वो जो है तालाब में जो है मिट्टी बह करके चली जाती है और तालाब की गहराई जो कम हो जाती है, तो उसका जो है उसमें जो पानी का जो एरिया है वो भी कम हो जाता है हमारा।
1: तो ये तो कटाव की रोकने की बात हो गई हमारे किसान भाइयों के लिए। और अब प्रश्न उठता है कि जो इसकी जो उर्वरा शक्ति जो छीण हो रही है, और लोग बोलते हैं कि रासायनिक खातों का अंधाधुंध प्रयोग करें, अगर इसका प्रयोग ना करें तो खेती भी अभी की स्थिति में थोड़ी लचर स्थिति में हो जाएगी, आखिर क्या करें किसान भाई?
0: देखिए, आज के समय ऐसा हो गया है कि मिट्टी जो है हमारे खेत का जो भी उर्वरा शक्ति है वो टोटली जो है डिपेंड हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर पे।
1: जी,
0: वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, साथ साथ में जो है जो भी उसका भोजन कर रहा है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए जो है हम लोग जो है अब सलाह दे रहे हैं किसानों को कि आप जो है जो भी आपका रासायनिक खाद है उसका जो है उपयोग कम से कम करें, और अधिक से अधिक जो है आप प्राकृतिक खाद का उपयोग करें,
1: तो ज्यादा,
0: या जो है कंपोस्ट का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि किसान कहते हैं कि हमारे पास गोबर की कमी है, कंपोस्ट नहीं है, तो ऐसे तमाम तर आज के समय में आ गया है, पहले से ही चला रहा था प्राकृतिक खाद जो है, जो आपको 10 केजी गाय के गोबर से और 5 लीटर गोमूत्र से आपका तैयार किया जा सकता है 1 एकड़ के लिए।
1: जी।
0: तो यदि उसको आप करते हैं तो उसकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है हमारी बढ़ती है। एक्चुअली है क्या ना कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया जो है जो हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उससे नष्ट हो गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि खेत में केंचुआ आजकल नहीं है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो केंचुआ तो आपको बड़ा है वो दिख जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे तमाम ऐसे बैक्टीरिया है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वही मिट्टी को जो है पोषक तत्व देते हैं और जिसके चलते पौधों को मिलता है,
1: विकास होता है।
0: तो वो जो है बैक्टीरिया मर गए हैं, और बैक्टीरिया तभी आ सकते हैं जब आप प्राकृतिक खाद दें।
1: जी, और ऐसे भी तो अगर अनुपात मिला करके देने की बात आती है कि कुछ आप रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आप प्राकृतिक जो केचुआ वगैरह उसका भी उपयोग करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जो है जैसे कि हम लोग एकाएक बंद करने की बात नहीं कहते हैं कि रासायनिक खाद को आप एकाएक बंद कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि 1.5 केजी यूरिया प्रति कट्ठा आप दे रहे हैं तो उसको जो है आप जो है 1 केजी कर दीजिए या 1.25 केजी कर दीजिए, फिर इसके अगले साल फिर उसको 200-250 ग्राम और

0: कम कर दीजिए,
1: अच्छा
0: फिर उसके अगले साल और कम कर दीजिए, ऐसे
1: जी
0: करके धीरे धीरे जो है आप एक समय 3 साल के बाद, हम लोगों ने ऐसा देखा है और खुद किया है अपने फार्मों में किया है, किसानों के यहाँ किया है
1: जी जी,
0: कि आप 3 से 4 साल के बाद आपको जो है रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और जो है मिट्टी जो है अपने आप जो है उसके अंदर उर्वरा शक्ति जो है उसके अंदर बैक्टीरिया इतने पनप जाएंगे कि फिर जो है आपको किसी भी तरह के, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस पे बहुत ज्यादा माने फोकस है कि आप जो है प्राकृतिक खेती करिए। इस प्राकृतिक खेती में क्या है कि आप जो किसी भी तरह का माने बहुत ज्यादा आपके गोबर की खाद या किसी तरह के माने खाद की जरूरत नहीं है। 10 केजी से 1 एकड़ की आप खाद का काम हो सकता है 10 केजी गोबर से ही, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
1: लेकिन तकनीकियां अपना,
0: हाँ, किसान इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने कंपोस्ट से खेती करेंगे या प्राकृतिक खेती करेंगे तो ज़्यादा मतलब कि गोबर की जरूरत पड़ेगी, उतना हमारे पास जानवर नहीं है, तो कैसी बात नहीं, कम से कम गोबर में और गोमूत्र में जो है आपका खाद उससे बन जाएगा।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार पांडे से लगी भेंटवार्ता, विषय था मृदा कटाव से सुरक्षा और जल संरक्षण। और अब आइए जानते हैं पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी तैयार करने की विधि। जी हाँ श्रोताओं, पॉली हाउस में सब्जियों की नर्सरी यानी कि पौध तैयार करना आज के इस आधुनिक कृषि के लिए एक बेहतरीन तकनीक के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से बेमौसम यानी कि ऑफ सीजन सब्जी उगाने के लिए स्वस्थ, रोग मुक्त और उन्नत पौधे तैयार किए जाते हैं। पॉली हाउस के भीतर का वातावरण यानी कि तापमान, आर्द्रता और प्रकाश नियंत्रित रहता है। इसके कारण से बीजों का अंकुरण का जो प्रतिशत है प्रायः 90% से भी अधिक होता है और इस कारण से फसल भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। श्रोताओं, पॉली हाउस में ट्रे को भरकर भी बीज की बुआई की जा सकती है, स्टैकिंग कर करके भी हम लोग बीज की बुआई कर पौधों की तैयारी कर सकते हैं और अंकुरण के पश्चात भी जो उसकी जो देखभाल होती है नर्सरी की देखभाल वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें ये देखा गया श्रोताओं कि जैसे ही बीजों का अंकुरण होता है तो सभी ट्रे को तुरंत एक दूसरे से हटाकर पॉली हाउस के भीतर बने ऊंचे स्टैंड या बेंच पर फैला दिया जाता है। पौधों को पानी हमेशा सुबह के समय स्प्रे पंप से दिया जाता है और शाम को या दोपहर में पानी ना दे क्योंकि इससे उमस बढ़ती है यानी कि इसके कारण से पौध गलन की समस्या भी हो सकती है। और जब पौधे 10 से 12 दिन के हो जाए तो उनमें असली पत्तियां भी आपको दिखाई पड़ने लगी तब पानी में घुलनशील खाद डालें, 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डालकर इसका छिड़काव किया जाता है। तो श्रोताओं, इस तरह से देखा जाए तो 21 से 28 दिनों में सब्जियों के सभी प्रकार के पौधों से 4 से 5 पत्तियां आ जाती है और उनकी ऊंचाई करीबन 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है जो कि वो खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसे जो कि ट्रे में है तो हल्का दबाने पर ये पूरा पौधा मिट्टी के ढेले यानी कि रूट बेल समेत भी बाहर आ जाते हैं। इससे रोपाई करते समय जड़ें खराब भी नहीं होती है और खेत में पौधे भी तुरंत लग जाते हैं। तो देखा जा सकता हूँ तो ये काफ़ी आसान और सुरक्षित तरीका है अपने पॉली हाउस में बेमौसम हम सब्जियों की नर्सरी तैयार कर भरपूर फसल सब्जियों की ले सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें खेती बाड़ी की और अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेतीबाड़ी का कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं कृषि उत्पाद और ग्रामीण विकास पर आधारित हमारा कार्यक्रम ग्रामीण सभा। तो आज के ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को पुनः कल्याण कुमार का नमस्कार, जोहर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे स्प्रिंकल सिंचाई से लाभ। आज का विचार का विषय है बकरी पालने से फायदे। कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता भी हम आपको आज सुनवाएंगे। विषय है जैविक खाद, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। और आज का मौसम का भी मिजाज

0: बताएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं स्प्रिंकल सिंचाई से लाभ। जी हाँ श्रोताओं, आज किस आधुनिक क्षेत्र में या आधुनिक काल में देखा जाए तो आधुनिक कृषि में जल को संरक्षित करते हुए पैदावार को बढ़ाना काफी प्रभावी माध्यम है। इसमें पानी को पाइप नेटवर्क के माध्यम से दबाव के साथ खेतों तक पहुंचाया जाता है और फव्वारे की मदद से हवा में छिड़का जाता है, जिससे पानी बिल्कुल प्राकृतिक वर्षा की बूंदों की तरह फसल पर गिरता है। पारंपरिक बाढ़ यानी कि सिंचाई की तुलना में यह तकनीक पानी की बर्बादी को रोकती है और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। स्प्रिंकल सिंचाई से होने वाले अगर लाभ की बात करें श्रोताओं, तो कई तरीके से देखा जा सकता है। सर्वप्रथम पानी की भारी बचत हो जाती है। जी हाँ श्रोताओं, पारंपरिक खेती से पानी का एक बड़ा हिस्सा वाष्पीकरण, रिसाव और नलियों में बहकर बर्बाद हो जाता है, जबकि स्प्रिंकल सिस्टम से पानी सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र और पत्तियों पर गिरता है। इस कारण से 30-50% तक पानी की बचत हो जाती है। कम पानी वाले क्षेत्र या सूखे की स्थिति में यह जो स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली है काफी कारगर साबित होती है। उबड़ खाबड़ और पहाड़ी जमीनों के लिए भी यह जो प्रणाली है, सिस्टम है, काफी मददगार है, क्योंकि पारंपरिक सिंचाई के लिए खेतों का समतल होना जरूरी है, तभी समान रूप से पानी की उपलब्धता बन सकती है। लेकिन स्प्रिंकल सिंचाई होने से जमीन के समतल कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्र हो या ढलान वाले स्थल हो या उबड़ खाबड़, सभी जगह पानी भरपूर मात्रा में दी जा सकती है और इससे मिट्टी का कटाव भी नहीं हो पाता है। स्प्रिंकल सिंचाई की मदद से घुलनशील खाद और कीटनाशक का भी सीधे सिंचाई के माध्यम से छिड़काव किया जा सकता है, जिसे कि फर्टिगेशन कहा जाता है। इसमें उर्वरक सीधे पौधों की जड़ और पत्तियों तक समान मात्रा में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता हो तो खाद की बर्बादी नहीं हो पाती है, मजदूरी की भी बचत हो जाती है। पौधों के द्वारा भी इन पोषक तत्वों का अच्छे तरीके से अवशोषण हो जाता है और इससे फसल तेजी से बढ़ती है। सिंचाई से खेत में पानी जमा हो जाता है, जब ज्यादा पानी हो जाता है तो इससे मिट्टी भी कड़क हो जाती है और पौधों के जड़ की को भी हवा नहीं मिल पाती। तो कहा जाए देखो, ज्यादा पानी होने से कहीं ना कहीं मिट्टी, पानी, पौधे सभी इससे प्रभावित होने लगते हैं, जबकि वहीं अगर फव्वारा सिंचाई अपनाते हैं तो पानी धीमी और नियंत्रित गति से गिरता है, जो पौधे और मिट्टी आसानी से इसे सोखते हैं और इसमें कहीं ना कहीं एक संतुलन भी बना रहता है। फसल की पैदावार और गुणवत्ता में भी श्रोताओं वृद्धि होती है। अगर सही मात्रा में, सही समय में पानी मिले तो निश्चित रूप से पौधों का विकास बेहतर होता है। और ये भी देखा गया श्रोताओं कि स्प्रिंकल सिंचाई करने से पैदावार में करीबन 20-30% तक की बढ़ोतरी होती है। उत्पाद का आकार हो, रंग हो, उसकी गुणवत्ता हो, काफी अच्छे, उन्नत और अनुकूल हो जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो मौसम के उतार चढ़ाव से भी पौधों की सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि पाले के से भी बचाव हो जाती है। जब ज्यादा सर्दियों में पाले पड़ने लगते हैं तो रात में स्प्रिंकल सिंचाई से पौधों का तापमान को बढ़ाया जा सकता है, इससे फसल जमने से बच जाते हैं। वहीं गर्मियों में दोपहर के समय हल्का सिंचाई करने से भी ठंडा हो जाता है वहाँ का वातावरण, तो थर्मल स्ट्रेस से भी पौधे बच जाते हैं। समय और श्रम दोनों की स्वतः बचत हो जाती है। खरपतवार और कीड़ों पर भी काफी हद तक इस पर नियंत्रण देखा जाता है, क्योंकि पानी सिर्फ पौधों के आसपास और सीमित मात्रा में गिरता है, इससे पूरे खेत में अनावश्यक खरपतवार नहीं हो पाते हैं। निश्चित रूप से खरपतवार ज्यादा नहीं होंगे तो पौधों की जो बढ़वार है वो ज्यादा होगी। फव्वारे के पानी से पौधों की पत्तियां भी लगातार घुलती रहती है, उन पर जमा धूल भी साफ हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी तेज होती है, पत्तियों पर पनपने वाले जो छोटे हानिकारक कीड़े हैं वो भी स्वतः बह जाते हैं। तो इस फव्वारे प्रणाली से काफ़ी हद तक काफ़ी लाभ है, इसमें अतिशोक्ति सत्य है ये, लेकिन जरूरत है कि हम इस सिस्टम को अपनाएं, क्योंकि स्प्रिंकल सिंचाई ये पानी ही नहीं बचाता है बल्कि खेती की लागत को भी कम करता है और इससे कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई के आय में भी बढ़ाने में ये काफी कारगर साबित होता है। सरकार भी इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पर ड्रॉप मोर कॉर्प योजना के तहत सब्सिडी यानी कि अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे कि हमारे किसान भाई इस स्प्रिंकल सिंचाई को अपनाएं और इसका लाभ लें। तो श्रोताओं, टिकाऊ और मुनाफे वाली लाभ के लिए हर किसान भाई को इस स्प्रिंकल सिंचाई सिस्टम को अपने खेतों में लगाना आवश्यक है, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं और अपने खेतों से ज़्यादा फसल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें कि किस तरीके से हम अपने खेतों में स्प्रिंकल सिंचाई का उपयोग करें, इसके क्या क्या लाभ है। हालांकि प्रारंभ में इसके में लगाने में लागत में इसको लगाने में लागत ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा सा रख रखाव की भी बात आती है, लेकिन ये कई सालों तक आपको इसका लाभ मिलता है। और सबसे मुख्य जो दो तीन बातें हैं, पहली बातें हैं कि इससे पानी का बचाव होता है, यानी कि अगर आपके पास कम पानी भी है तो कम पानी से भी आप अपने खेतों में भरपूर सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, स्प्रिंकल सिंचाई से 20 से 30 फीसदी तक ज़्यादा फसल की भी प्राप्ति होती है, और इसी स्प्रिंकल से आप पौधों को पानी, खाद और कीटनाशक दवा का भी छिड़काव ससमय करते हैं, और इसको करने से कहीं ना कहीं आपका समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो श्रोताओं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्प्रिंकल सिंचाई से क्या क्या और कितने लाभ है। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें स्प्रिंकल सिंचाई से लाभ, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता। विषय है जैविक खाद। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: कार्यक्रम किसानवाणी में किसान भाइयों, आज हम बातें करेंगे जैविक खाद के प्रकार एवं तैयार करने की विधि तथा उपयोगिता विषय पर। और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि जैविक खाद है क्या और इसे तैयार कैसे कर सकते हैं।
2: देखिए, समय की मांग ये है, हम लोग इस चीज़ को देखे हैं कि एक समय था, पुरातन समय से लोग बिना रासायनिक खाद के या कीटनाशक के खेती करते थे
1: जी।
2: लेकिन समय के साथ आज हम लोग इस चीज़ को पाए हैं कि जब उनका प्रयोग किया गया रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का, तो उपज में बढ़ोतरी हुई, लेकिन खेती में लागत उसके अनुपात में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और आज किसान कर्ज के बोझ तले हो गया है और खेती मुनाफा वाली खेती रह नहीं गई। मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति थी एक समय के बाद पूरी तरीका से खत्म होने की ओर चल पड़ी है। ऐसी स्थिति में जब तक हम लोग अपने खेतों में जैविक खाद का प्रयोग करके फिर से मिट्टी को जागृत न करें, उसमें जान नहीं डालें, तब तक आने वाला समय बहुत ज़्यादा भयावह होगा
1: जी।
2: तो जैविक खाद ऐसा कुछ अलग से नहीं है, जो हमारे वातावरण में जैसे पशु का मल है, गोबर है, या जो घर का कूड़ा कचरा है, घास है, ये सब से जो हम खाद बनाते हैं वही जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट जो आजकल सबसे ज्यादा नाम है कि वर्मी कंपोस्ट है, तो ये सब जैविक खाद के प्रकार हैं। यदि हम लोग किसान की भाषा में बोले कि जैविक की कितनी जैविक खाद के कितनी प्रकार है, तो मोटा मोटी इसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं।
1: अच्छा।
2: एक गोबर का खाद हुआ, दूसरा हुआ वर्मी कंपोस्ट जिसको हम लोग कहते हैं
1: जी।
2: और कुछ ऐसे भी फसल हैं
1: जी
2: जिनको हरी खाद के रूप में हम लोग अपने खेत में यूज करते हैं, जैसे उसको उगाए।
1: अच्छा।
2: खासकर दलहनी के कुछ फसल हैं, उनको उगाए और फसल तोड़ के उनके पत्ती सहित खेत में जोत देते हैं, तो वो हरी खाद का एक प्रकार हुआ।
1: अच्छा।
2: दूसरा कंपोस्ट, जिससे हम सभी लोग परिचित हैं, गोबर के खाद से बनाते हैं, और वर्मी कंपोस्ट, इससे भी किसान भाई परिचित हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब हम लोग उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है
1: जी।
2: जैसे कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें 5 से 6 महीना लग जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं 3 महीना का समय लगता है, तो उसके समय सीमा को हम लोग यदि कम करें और उसकी उपयोगिता को बढ़ा दें, तभी हमारी जैविक खेती की जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें सफल हो सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, और अगर तैयार करने की बात हम अगर करें तो क्या कर सकते हैं इसमें?
2: देखिए, जब तैयार करने की बात हम लोग कहते हैं, जैसे कंपोस्ट बनाने की,

0: हम लोग बात करते हैं, तो आजकल बाजार में वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से आप देखेंगे कि सीसी में तरल पदार्थ आती है, वो एक तरीके का फंगस है।
1: अच्छा।
0: और उस फंगस का यूज करके हम लोग कंपोस्ट बनाने में की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं।
1: अच्छा।
0: इसके लिए करना क्या होता है, किसान भाई जहाँ पे उनको कंपोस्ट जो गोबर खाद के लिए वो फेंकते हैं अपने हाँ, डेली का कंपोस्ट फेंकते हैं
1: हाँ,
0: या जो सड़ी गली पदार्थ
1: हाँ, फेंकते हैं, किसी अवशेष जो फेंकते हैं,
0: उसमें वो समय समय पे डिकम्पोजर का छिटाई करेंगे।
1: अच्छा।
0: उसके लिए डिकम्पोजर किसान भाइयों को बनाने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। इसके लिए उनको करना है ये है कि जैसे 200 लीटर पानी किसी प्लास्टिक के ड्रम में हो, इतना बड़ा ड्रम लेना है, उसमें पानी लेना है
1: जी।
0: इसके अलावा 2 kg गुड़ में जितना पुराना गुड़ हो, जितना खराब गुड़ हो, उतना ही फायदेमंद है।
1: अच्छा।
0: यदि उसमें फंगस लगा हो, टेस्ट में अच्छा नहीं हो, तो वो ज्यादा फायदेमंद
1: है। फायदेमंद।
0: और इसके बाद हम लोग बोलते हैं छाछ।
1: अच्छा।
0: मट्ठा।
1: अच्छा।
0: तो मट्ठा आप 2 से 5 लीटर।
1: अच्छा।
0: और यदि ये मट्ठा गाय का मट्ठा हो तो ज्यादा फायदेमंद है।
1: अच्छा।
0: ये तीनों का पहले घोल बनाएंगे, पानी का, गुड़ का और मट्ठा का।
1: अच्छा।
0: घोल कर लेंगे और इसके बाद जो डिकम्पोजर आता है सीसी में, उस डिकम्पोजर को मिलाएंगे और अच्छी तरीका से उसको चलाएंगे।
1: अच्छा।
0: किसान भाई यदि डिकम्पोजर खरीदते हैं तो एक ध्यान देंगे कि यदि हरा हरा उसमें बना रहे तो और अच्छा माना जाएगा। मतलब कहिएगा कि ग्रोथ अच्छा है, जीवाणु अच्छे हैं उसके भीतर में, उसको मिलाएंगे। और लकड़ी से मिलाना है, लोहे का प्रयोग नहीं करना है सबसे। और उसी डिकम्पोजर को जैसे जो खाद वगैरह बनाने के लिए गोबर फेंक रहे हैं या घर का कूड़ा फेंक रहे हैं, घर के किचन के सब्जी फेंक रहे हैं, ध्यान रखना है कि घर के प्लास्टिक और जो मैंने सूखा टाइप का कचरा है उसको नहीं फेंकना है उसमें
1: जी।
0: और साथ में डिकम्पोजर को बीच बीच में फेंकते जाएंगे तो उनका कंपोस्ट बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा। दूसरा, जब हम लोग वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट के लिए आज जैसे पहले चेंबर बनाना पड़ता था, लेकिन अभी चेंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो प्लास्टिक का बना हुआ 3 फीट ऊंचाई का और 6 से 7 फीट चौड़ा इस तरीका का वर्मी कंपोस्ट बेड आती है।
1: अच्छा।
0: उसमें किसान भाई सबसे नीचे मोटा टाइप का जो है पोटोस्थेथर टाइप का बेड बना देते हैं।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद उसमें 3-4 सेंटीमीटर तक गोबर डालेंगे। गोबर डालने में ध्यान रखना है कि गोबर सड़ा हुआ हो। इसके बाद फिर 3-4 सेंटीमीटर तक अपने घर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको डालेंगे। इसी तरीके से 3-4 लेयर बना लेंगे। और उसमें जो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो केचुआ का है, वो केचुआ को उन लोग जैसे 1.5 से 2 हज़ार जरूरत पड़ता है बेड में, तो 1.5 से 2 हज़ार वो केचुआ को छोड़ेंगे और इसके बाद उनका बहुत सुंदर खाद तैयार होगा। लेकिन इसमें किसान भाइयों को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है
1: जी,
0: कि गोबर का जितना कम हो सके उतना प्रयोग करें, क्योंकि केचुआ की प्रकृति होती है वो नीचे जाना चाहेगा।
1: हाँ हाँ।
0: गोबर उसके शरीर पर भार भी डालेगा और उसके तहत उनका काम करने की प्रक्रिया कम हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: इसलिए जितना भी बाकी अवशिष्ट हो, सूखा पत्ती हो,
1: सब
0: ये सबको डालें। ज्यादा गोबर, लोग सोचते हैं कि ज्यादा गोबर डालेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, ये फायदेमंद नहीं है। अच्छा, जो हरी खाद की मैं बात किया तो हरी खाद होती है जैसे ढैंचा है, मूंग है, एक राइस बीन है, ये सबको अपने खेत में किसान भाई जैसे लगाए, लगाने के बाद यदि जरूरत है तो 1-2 फलन तोड़े।
1: अच्छा।
0: और जिसमें जरूरत नहीं है, जैसे ढैंचा ऐसा में जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट उसको जोत दीजिए,
1: जुताई कर दीजिए।
0: हाँ, कि वो आराम से खेत में मिल जाए। और जैसे मान लीजिए हमें जब सीडिंग करना है, मैंने जब बुआई करना है, तो उसे कम से कम 45 से 50 दिन पहले एक कार्यक्रम हम लोगों को कम्प्लीट कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जमीन की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आज खाद का दाम बढ़ते जा रहा है दिनों दिन
1: जी,
0: और सब्सिडी भी कम होते जा रही है, तो किसान भाइयों को खाद पर निर्भरता कम होगी। उसके साथ ही जमीन में जो है पौष्टिकता आएगी। और जो हम लोग बात बोलते हैं ना कि आज जमीन में आपको बार बार यदि केमिकल खाद का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पहले किसानों को 10 दिन में खेत में पानी देना पड़ता था, आज है उसको 2 से 3 दिन में खेत सूख जाता है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो वो जमीन के स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, उसके भीतर के माहौल को ठीक रखने के लिए हमें ऑर्गेनिक उत्पाद का खेत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना ही

0: होगा
1: जी।
0: तभी पौधों को जो पानी की डिमांड होती है वो, चूंकि पानी रहेगा खेत में, पकड़ के पानी को रखेगा, और चूंकि केमिकल खाद का प्रयोग करते हैं तो पानी को बांध के रख नहीं पाता है,
1: नहीं, नहीं।
0: और जमीन मरुस्थल जैसा बालू जैसा होते चला जाता है
1: जी।
0: तो कुछ रहेगा।

0: इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है?
1: जैविक खाद का किसानों को, देखिए अपनी खाद के शुरुआत की जो जरूरत है,
0: हाँ।
1: जैविक खाद का धान से लेकर के सब्जी के फसल से लेकर फूल के सब जगह किया जाता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन यदि हमारे पास मान लीजिए शुरुआत में जैविक खाद कम है, तो आप इसका सब्जी के खेती में प्रारंभ में प्रयोग कीजिए। आपके पास यदि ज़्यादा होता है तब धान के खेत में आप जाइए। और खासकर जैसे जो मैं डिकम्पोजर से कंपोस्ट बनाने की बात किया था, उसको तो आप ऐसे ही जैसे आप धान लगा दिए और उसके बाद भी आप खेत में छिड़क सकते हैं गोबर को जहाँ तहाँ।
0: अच्छा।
1: वो क्या करेगा, और उसके बाद किसान भाई एक काम और कर सकते हैं, जैसे लाइन में एसआरआई विधि हम लोग बोलते हैं कि धान की खेती करते हैं एसआरआई विधि, उसमें क्या करते हैं कि घास को कादों में गड़ जाता है,
0: हाँ।
1: और वैसी स्थिति में जब डिकम्पोजर युक्त कंपोस्ट जो हम लोग छींटेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा। तो जितना निर्धारित मात्रा है उतना हम नहीं करेंगे। पुराना समय में होता ये था कि खाद पूरी तरीके से सड़ी नहीं होती थी, तो हमको कम से कम 45 से 50 दिन पहले खेत में जुताई करके उसको पूरा मिला देना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि पूरी तरीके से सड़ी खाद का हम कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, और चूंकि इसमें ज़्यादा जो नए तरीके से हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं, इसमें चूंकि जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा है और ये एक्टिविटी को वहाँ पर ज़्यादा अच्छा करेगा, तो ज़रूरत के अनुसार सबसे पहले सब्जी की खेती से शुरुआत करें, उसके बाद गेहूं की खेती से शुरुआत करें, उसके बाद धान की खेती में दलहनी में थोड़ा सा देखिए जरूरत कम पड़ता है। लेकिन यदि हम खेत में एक बार इसका प्रयोग करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा केमिकल वाला जो खाद है उसका प्रयोग करना हम लोगों को आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इसमें कम से कम किसान भाइयों को 3 से 5 साल का समय लगता है सही उत्पादन पाने में।
0: ये बातें हुई जैविक खाद के प्रकार, उसे तैयार करने की विधि और उपयोगिता पर। हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को और आपको।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिलीप कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता, विषय था जैविक खाद और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और आइए जानते हैं आज के विचार में बकरी पालन से फायदे। जी हाँ श्रोताओं, बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। कम लागत, कम जगह, कम समय में अधिक मुनाफा देने के कारण इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। देश में के छोटे और सीमांत किसान के साथ साथ बेरोजगार युवा भी इस व्यवसाय को अपनाकर एक बेहतरीन और सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं। बकरी पालन के लिए हम प्रमुख लाभों के बारे में बात करें श्रोताओं, तो बकरी पालन गाय या भैंस की तुलना में बहुत ही कम पैसों में इसकी शुरुआत की जा सकती है। बकरी एक मध्यम स्तर का होता है, तो इसके लिए बकरी फार्म जो है बहुत ही छोटे सेट और कम खर्च में शुरुआत इसकी की जा सकती है। बकरियों की कीमत बड़ी गाय और भैंसों की तुलना में काफ़ी कम होती है, तो इसमें जोखिम भी प्रायः कम हो जाता है। बकरियों का शरीर का आकार छोटा होने के कारण इसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी इसका प्रबंधन जो है आसानी से कर देते हैं। इनके आवास के लिए बहुत बड़े महंगे या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक छोटे से बाड़े में या फिर चराई के माध्यम से इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। इन्हें भोजन के रूप में विशेष दानों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी स्थानीय वनस्पतियों को खाकर ये जीवित रहती है और बढ़ती भी है। एक बकरी 12 से 14 महीने की उम्र में बच्चा देने के योग्य भी हो जाती है और हर 8 महीने में एक बार या फिर 2 साल में 3 बार ये बच्चे देती है, जिसमें अधिकांश नस्लें जो है वो एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है। इसलिए बहुत ही कम समय में एक छोटा फर्म बड़े फर्म के रूप में बदल जाता है। बकरी का दूध काफ़ी सुपाच्य होता है, इस कारण इसके में वसा के कण भी बहुत छोटे होते हैं और शिशुओं को, बीमार लोगों के लिए ये काफ़ी सर्वोत्तम दूध मानी जाती है। शुद्ध डेंगू जैसी बीमारियों में ब्लड टेस्ट बढ़ाने के लिए बकरी के दूध की मांग भी बाजार में बढ़ जाती है, इससे महंगे दामों पर भी बेचा जाता है। तो श्रोताओं, मटन की जो मांग यानी कि इसकी बकरे की जो मांग है, मटन की मांग जो है 12 माह तक बनी रहती है। हाँ श्रोताओं, बाजार में मटन की मांग हमेशा बनी रहती है, इसके दाम भी प्रायः कभी कम नहीं होते हैं। अन्य त्योहारों में बकरों की बिक्री से काफ़ी मुनाफा भी मिलता है।

बकरी को किसानों का एक चलता फिरता एटीएम भी कहा जाता है। सोचो कभी भी किसान भाई को जब भी पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो शादी हो, बीमारी हो या फीस हो, किसी भी स्थानीय बाजार में जाकर एक दो बकरियों को बेचकर तुरंत नगद पैसे की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बैंक या लोन पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है अगर आपके पास बकरी है तो। बकरी की जो मल है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा गाय भैंस के गोबर की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके उपयोग से फसल की पैदावार भी बढ़ती है और इसे बेचकर अतिरिक्त आय की भी प्राप्ति की जाती है। श्रोताओं, तो श्रोताओं ये देखा जा सकता है कि बकरी पालन जो है सूखे और अन्य मौसम की मार झेलने वाले क्षेत्रों के लिए काफ़ी एक सुरक्षित बीमा की तरह है। और इसमें अगर हम वैज्ञानिक तरीके से सही नस्ल, जिसमें कि सिरोही हो, जमुनापारी हो या बरबरी हो, इन नस्लों का यदि हम चयन कर इन्हें समय पर टीकाकरण कराकर इनका काम ले तो इस व्यवसाय से काफ़ी कम समय में ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं या पशुपालन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपके पास पूंजी का अभाव है, जगह का अभाव है, तो वैसी स्थिति में बकरी पालन से संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त कर लें और बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभिक स्तर पर इसकी शुरुआत करें। आप देखेंगे कि आने वाले साल दो साल के अंदर आपके पास काफ़ी बड़ी पूंजी भी तैयार हो जाएगी और पशुपालन के क्षेत्र में आपकी जानकारी, आपका अनुभव भी बढ़ जाएगा। तो इसके पश्चात आप अपने बकरी पालन हो या फिर गाय पालन हो, जो भी हो, तो उसमें आपकी जो स्थिति है, आपके अनुभव काफ़ी बेहतर काम करेंगे। निश्चित रूप से श्रोताओं, बकरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। और अब श्रोताओं इसी के साथ अब हम आपको बता दें चलते चलते डाल्टनगंज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 44 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का जो प्रतिशत है वह 9 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं ये तो थी बातें आज की ग्रामीण सभा की और अब इसी के साथ आज की इस ग्रामीण सभा से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी जारी की जाएगी, जिसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 23 मई से 2 सप्ताह तक अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी और संबंधित मतदाता बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकते हैं।
5: वर्तमान 2024 का मतदाता सूची में जिनकी मतदाता का नाम है उनका SAR तथा 2003 का मतदाता सूची का नाम से मैपिंग करना एक महत्वपूर्ण विषय है। SAR प्रोसेस में कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट उनका डिक्लेरेशन फॉर्म का साथ में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारखंड में अभी तक लगभग 75% मतदाता का मैपिंग हो गया। सभी अनमैप्ड मतदाता का सूची 23 तारीख से सभी झारखंड में सभी बूथों पर वो प्रकाशित होगा। किसी का नाम अनमैप्ड होगा तो तुरंत आपका BLO से संपर्क करते हुए उनका नाम का मैप करेंगे, सुनिश्चित करें।
4: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य में अति गरीब एवं वंचित परिवारों के सशक्तिकरण के लिए झारखंड समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि झारखंड का समावेशी विकास मॉडल अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत अगले चरणों में राज्य के हजारों अति गरीब परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका है। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन में शोध, रोजगार उन्मुखी शिक्षा, तकनीकी बदलाव और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
6: राजकीय विश्वविद्यालय विधेयक पास हुआ है, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है अपने अपने विश्वविद्यालयों में। राज्य सरकार की वेलफेयर की स्कीम्स हैं जो हमारे छात्रों के लिए हैं, उन सब के बारे में बताना है, सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्षमता वृद्धि हो सके, वो कम्पीट कर सके देश के अन्य अच्छे कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के कंपेरिजन में।
4: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री कृष्ण उत्सव में शामिल हुए और कीर्तन श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्कॉन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और संस्था समाज हित में सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने इस्कॉन से जनजातीय समाज को भी अधिक से अधिक जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित

0: बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान हैं तथा सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इधर हजारीबाग में 10 घंटे से अधिक बिजली कटौती से नाराज हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
1: शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ एक से डेढ़ घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है, पेड़ उड़ का उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम जीएम साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठे मिलेंगे, मैं उनको ये भी बोल के आया।
0: जमशेदपुर में पर्वत और नदी संरक्षण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्वत भारत की पहली आधारभूत संरचना है और इनके बिना नदियों तथा पर्यावरण का अस्तित्व संभव नहीं है।
2: आज का दिन जैव विविधता दिवस है। पहाड़ और नदियाँ दोनों जैव विविधता का स्रोत है। जलीय जीवों की रक्षा नदियाँ करती हैं और पहाड़ों पर अन्य जीवों की रक्षा पहाड़ करते हैं। और आज तक नदियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है, पहाड़ों के सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है। तो ये सम्मेलन आज उसी कानून बनाने के प्रारूप पर विचार करेगा।
0: हीट वेव को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल हीट स्ट्रोक के मामले कम हैं, लेकिन अस्पताल पूरी तरह तैयार है।
3: कल थोड़ा टेम्परेचर निश्चित रूप से ज्यादा था, अभी जो देख रहे हैं उसमें हीट स्ट्रोक वाली संख्या काफी कम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक तैयारी की बात है, उससे संबंधित जो भी जिस चीज की जरूरत है वो सारी व्यवस्था सदर अस्पताल में कर दी गई, इसलिए मरीजों को किसी भी तरह का हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम केंद्र रांची ने पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा और सरायकेला खरसावां जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 3 घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। रांची के धुरवा स्थित बंगीय सांस्कृतिक परिषद विद्यालय में 15 दिवसीय रांची जिला ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर में मलखंब, योग, खो खो, कबड्डी, आत्यापात्य और बैडमिंटन के बेसिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जापान में होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हॉकी झारखंड ने इसे राज्य की हॉकी परंपरा और सरकारी प्रशिक्षण व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि भारत अपना पहला मुकाबला 30 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून तक जापान में आयोजित होगा। नोएडा में आयोजित 11वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी रुद्रांश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रुद्रांश को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: देवघर में बच्चों को खेल की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम निर्माण की ओर गति बढ़ गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध करने और सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध कराए तो देवघर में आधुनिक स्टेडियम का काम शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अपने मद का पूरा राशि देने की बात कही है।
2: 500 करोड़ का जो है बड़ा स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाऊंगा जिसमें फुटबॉल खेलेंगे, उसी में सांसद जी का पूरा उपयोग आप ही के विधानसभा में करूँगा।
1: वहीं दूसरी तरफ देवघर में गर्मी में पेयजल और बिजली की किल्लत न हो इसके लिए नगर निगम बहुत तेजी से काम कर रहा है। मेयर रवि महतो ने कहा कि पंप हाउस की मरम्मत और पुनासी डैम से जलाशय की व्यवस्था देवघर में की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
3: पानी की समस्या तभी दूर हो सकता है जब पुनासी जलाशय पूर्ण तरह से जो है चालू होगा। उसी कार्य जो धीमी थी उसको कार्य को हम तेजी में कर दिए हैं। एनएससी का कुछ प्रॉब्लम था, एक मिल चुका है, एनएससी नहीं मिला उसको लेकर के भी हम लगे हुए हैं। और फिलहाल अभी जो सप्लाई पानी चल रहा है हमारे नदी से उसमें हम समय समय पर पानी पुनासी से छोड़वा करके नदी में पानी ला करके शहर में जलापूर्ति कर रहे हैं। और बिजली को लेकर के मेगा पावर जो कम मिल रही थी उसमें भी हम लोग जीएम से टीएमडी से बात करके उसको भी अभी फिलहाल वर्तमान में हम पहले से ठीक कर दिए हैं। बिजली बिल का काफी गड़बड़ी का शिकायतें आ रही थी, उसे कैंप के माध्यम से उसका भी समाधान हमने किया और कर भी रहे हैं। हमारे पास संसाधन की थोड़ी कमी है नगर निगम में, उस जितनी संसाधन है उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे शहर कैसे साफ सफाई रहे। हमारा धार्मिक स्थल है, यहाँ पे सभी जगह से हमारे यहाँ पूजा करने के लिए व्यक्ति आते हैं, उनको स्वच्छ वातावरण में बाबा का दर्शन करें।
1: वहीं देवघर को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। एनएचआई के महाप्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि देवघर बासुकीनाथ और गिरिडीह के मधुबन सहित कई धार्मिक स्थलों को एक सर्किट के रूप से जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण सड़कों की चौड़ीकरण सहित कई तरह के कनेक्टिविटी पर विशेष काम किए जा रहे हैं।
4: अभी इंडिया में हम लोग रिलीजन सर्किट बना रहे हैं, ये वो रूट्स होंगे जिसपे की जो पवित्र धाम है हमारे, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं या बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं या जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सब का जो पवित्र तीर्थ स्थान है उस सब को भी कनेक्ट करने की बात चल रही है, जिसके लिए हमारा NHI भी उसमें सहयोग दे रहा है। जैसे देवघर बासुकीनाथ है, ये बाबा धाम और बाबा बासुकीनाथ इन दोनों जगहों को जोड़ता है। इसके अलावा बिहार में भी बौद्ध सर्किट बन रहा है जिससे राजगीर और सारनाथ वगैरह सब जुड़ रहे हैं। इसी तरह से पारसनाथ को भी जोड़ने का भविष्य में योजना बनाई जा रही है। अभी बासुकीनाथ धाम में कांवड़िया पथ अलग से बना रहे हैं जो 3.5 मीटर चौड़ी है और बासुकीनाथ देवघर से सटाकर बनाया जा रहा है।
1: भीषण गर्मी के बावजूद देवघरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जारी है। प्रशासन ने मैनाथ धाम, बासुकीनाथ, नंदन पहाड़ और नौलखा मंदिर में पेयजल शेड और मेडिकल कैंप की व्यवस्था कर दी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। संथाल में इन दिनों गर्मी की छुट्टी के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और उन्हें बेहतर सुविधा मिले इस ओर जिला प्रशासन लगा हुआ है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:17 और 9 सेकंड हो चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, और अब आइए सुनते हैं फिल्म आप लौट चले के इस गाने को, जसपिंदर नलूला की आवाज़ में, नदीम श्रवण के बोल हैं और नदीम श्रवण के संगीत और समीर के बोल।

0: श्रोताओं, भी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म अग्नि साक्षी के इस गाने को। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, और इसी गाने के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं हम महफिल कवाली नगमों का कार्यक्रम। क्षमा कीजिएगा, आइए सुनते हैं रोजगार कार्यक्रम उड़ान, रोजगार से जुड़ी बातें के तहत कार्यक्रम उड़ान।
1: कार्यक्रम उड़ान में स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम आपसे बातें करेंगे मेडिकल क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर, इस विषय पर। श्रोताओं, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई

के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाही सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है, उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा, उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है, चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स या हेल्थ केयर में MBA जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं जैसे कि B Pharma यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो कई तरह की बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए दवाओं और दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है।
बी फार्मा स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए एम फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का फार्म डी पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक बीए, एमए, बीएससी, एमएससी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय एमफिल एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार एमबीबीएस नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका मेडिकल का जो करियर है, मेडिकल क्षेत्र में जो रोजगार करने की इच्छा है, उत्कंठा है, आकांक्षा है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रवेश लेकर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की एमबीबीएस के अलावे
मेडिकल के क्षेत्र में करियर

0: के कई अवसर उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपना रोजगार, अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम उड़ान से इजाज़त, अगले अंक तक के लिए नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान, रोजगार संबंधी बातों को लेकर ये कार्यक्रम। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

तो आपने सुना फिल्म बाजीगर के इस गाने को विनोद राठौर अलकायन की आवाज में गौहर कानपुरी के बोल अनुमली के संगीत के इसी के साथ चित्रपट कार्यक्रम में ही समाप्त होता है। और अब आइए सुनते हैं कवाली नगमों का कार्यक्रम।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे महफिल कव्वाली नगमों का कार्यक्रम। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा। रात्रि 10:00 हम अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर होंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा

कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि

0: प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
2: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
2: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ

0: के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वाग देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक़ वस्ता यूरोप इक्तसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदादे दहशतगर्दी में शिरकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए

0: वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौ तकरर शुदा नौजवानों को तकररी के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिससे वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के अज़्म की तकमील की जानिब एक कदम है। रोजगार मेला नौजवानों को बामाने मौके फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहा है ताकि वो बाख्तियार हो सकें और मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सकें। अपने आगाज के वक्त से मुल्क भर में मुनक्किदा 18 रोजगार मेलों के जरिए तकरीबन 20 लाख तकरूरियों के खतूत जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद होगा। 9 तकरूर शुदा उम्मीदवार, जिन्हें मुल्क भर से मुंतखब किया गया है, मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को ज्वाइन करेंगे, जिनमें रेलवे, दाखिली उमूर, सेहत और खानदानी बहबूद और आला तालीम के महकमे के अलावा दीगर कई दूसरे महकमे शामिल होंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना देगी जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। जनाब शाह नई दिल्ली में आज सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के इन्वेस्टिचर तकरीब और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत तमाम नौयत की टेक्नोलॉजियों को मरबूत करके अगले बरस तक सरहदों की सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रिड तामीर करने की जानिब काम जारी है जिस पर हमला करके कामयाबी हासिल कर पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि वजारत जल्द ही स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराएगी जो ड्रोन्स, रेडार्स, जदीद तरीन कैमरों और दीगर नई टेक्नोलॉजियों से लैस होगा। वजीर दाखिला ने बताया कि जैसे ही इस स्कीम का आगाज होगा, सरहदी हिफाजती फोर्स का काम खातिर खाहत तक आसान और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साइबर खतरात, हाइब्रिड नौयत के जंगी सामान और ड्रोन से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के लिए नई हिकमत अमली को अपनाना लाजमी है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: वजीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज़्म है कि वो न सिर्फ दरअंदाजी को रोके बल्कि दरअंदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि ये आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश भारत की कलेदी दिफाई तैयारी में एक और संगे मील की अलामत है और मुल्क की कम अज कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत पर एतमाद को मजीद तकवीत देती है। अग्नि 1 मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में ही तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी

0: प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को बीसीजी, टेटनिस और डिफ्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज़्म का इआदा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई NHAI के अहद की अक्कासी करता है, जहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैनुल अक्वामी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदामात में एक दूसरे का तआवुन करेंगे। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज़राए खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबेकाइफ के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदाम और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन, पायदारी और आलमी पेशरफ में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूदात पर अपने ख्याल का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये NEET UG 2026 इम्तिहान के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने NEET UG 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे, जिसे इस महीने की 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 GW रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरअज़्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी IPL क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
2: यह है विविध भारती।
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथी राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: क्या तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी उसके

गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घी उजाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोकधुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक श्रोताओं हम बने हैं आपके साथ रजनीगंधा के खूबसूरत सफर में।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। फिल्म समाधि के इस गाने को आपने सुना लता आशा भोसले की आवाज़ में, आर डी वर्मन के संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

दिल अपना और प्रीत पराई, लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना इस गाने को। शंकर जयकिशन के संगीत और शैलेंद्र के बोल थे।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा कातिलों के कातिल। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ में कल्याण जी, आनंद जी के बोल संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के बोल आपने सुना।

गाता रहे मेरा दिल। फिल्म गाइड के गाने को आपने सुना श्रोताओं किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में, एस डी बर्मन के संगीत और शैलेंद्र के बोल थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:28 और 34 सेकेंड हो चुके हैं। 11 बजे तक हम बने हैं आपके साथ कार्यक्रम रजनी।

अभी आपने सुना फिल्म दिल है कि मानता नहीं के गाने को राधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में, नदीम श्रवण के संगीत समीर के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, एस टी बर्मन के संगीत में फिल्म आराधना के इस गाने को।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के गाने को आपने सुना श्रोताओं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में, खयाम के संगीत और बसर नवाज के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं राम अवतार फिल्म के गाने को मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत।

श्रोताओं, फिल्म राम अवतार के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म का संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे 11:05 पे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256

रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: For a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।